0: Breaker Radio Network. Broadcasting in Greater London, Greater Manchester and the Midlands with the UK's biggest Asian hits.
1: भारत या पाकिस्तान जाने की सोच रहे हैं तो एयर टिकट साउथ हॉल ट्रेवल से खरीदिए।
2: मगर साउथ हॉल ट्रेवल से ही क्यों?
1: क्योंकि उनसे ज्यादा सस्ती टिकटें कहीं नहीं मिलेंगी।
2: गारंटेड
1: बुकिंग करवाएं और उसके बाद 24 घंटों के भीतर कहीं से भी सस्ती ला के दिखाएं तो ये फुल रिफंड या प्राइस डिफरेंस वापस कर देंगे। साउथ हॉल ट्रेवल
2: फोन 02085748410।
1: 24 घंटे किसी भी वक्त फोन करें 02085748410। एट ऑल प्रोटेक्टेड।
3: You're both on the same road. Same tarmac, same rules, just a different number of wheels. Motorbikes aren't in your way, they're on their way, just like you. So use your mirrors, check before you maneuver, and be aware of motorbikes. Because when we look out for each other, everyone gets where they're going safely. Motorbike safety, it's on all of us. National Highways.
0: Leica Radio Network. Broadcasting in Greater London, Greater Manchester and Leicestershire with the UK's biggest Asian hits. Sounding good throughout the night with the biggest soothers. It's your Leica Radio.

0: This is Leica Radio.
1: काम कर गई दोनों ही मेरी बख्शिश के लिए, मोमिन की दुआ, सूफी की सदा।

दुख वेद पाठ असंख जोग मन रहे उदास, असंख भगत गुण ज्ञान विचार, असंख सती असंख दातार, असंख सूर मोह पक्षार, असंख मोन लिवलाए तार, कुदरत कौन कहा।

मूर्ख अंध गोर, असंख चोर हराम खोर, असंख अमर कर जाहे जोर, असंख गलवड हत्या कमाए, असंख पापी पाप कर जाए, असंख कूड़े यार कूड़े फिराए, असंख मलेच्छ मल भक खाए, असंख निंदक सिर करे भार, नानक नीच कहे विचार, वारिया न जावा एक वार, जो तुद भावे साई वलिकार, तू सदा सलामत निरंकार, असंख नाव असंख थाव, अगम अगम असंख लो, असंख कहे सिर भार होए।

भगत रसाले और केते गावन से मैं चितनावन नानक क्या विचारे सोई सोई सदा सच साहिब साचा साची नाई है भी हो

जोर ना जुगती छुटै संसार, जिस हाथ जोर कर वेखे सोए, नानक उत्तम नीच ना कोए। राती रुती चित्ती वार, पवन पानी अग्नि पाताल, तिस विच धरती थाप रखी धर्मसाल, तिस विच जी जुगत के रंग, तिनके नाम अनेक अनंत, करमी करमी होए विचार, सच्चा आप सच्चा दरबार, तिथे सोहन पंच परवान।

0: This is Leica Radio.
1: Leicester Falcon Cash and Carry Festive Shopping का Perfect Destination. राखी और गणेश आइडल्स अब अवेलेबल हैं सभी Falcon Stores पर. ओनम संध्या के लिए प्री बुकिंग्स भी शुरू हो चुकी हैं. Falcon Snacks 300 ग्राम्स की फुल रेंज सिर्फ £1.99 each. मुस्तफा देहरादूनी राइस 20 LBS सिर्फ 13.49. सुहाना खमन ठोकला 500 ग्राम्स सिर्फ £1.99 each या 2 for £2.99. टिल्डा ग्रैंड बासमती 20 kg सिर्फ £29.96. एस मोतीराम नमकीन अब सिर्फ 9 rupees से शुरू और हर्ज़मैन बटर घी 20 kg सिर्फ £10.99.
2: फाल्कन कैश एंड कैरी 82A साइज 10 स्ट्रीट वेस्ट लिस्टर LE1 2JU एंड 2A रोल आउट सेल लिस्टर LE5 4UN.
3: कुछ शामें कैलेंडर में नहीं दिल में हमेशा के लिए बस जाती हैं. इंडियन आइडल फेम सुगंधा डाटे लेकर आ रही हैं एक यादगार म्यूजिकल इवनिंग लाइव इन कॉन्सर्ट. Saturday the 5th of September at the Platinum Suite, Leicester. Apni seats aaj hi reserve kijiye. For more information, call Mr. B on 07860-280655. Exclusive radio partner, Leica Radio Network.
4: Location, location, location.
5: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
4: Introducing Greens by Danio, a premium collection of townhouses and villas.
5: Located in Dubai, in a prime location for high appreciation.
4: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
5: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
4: And the best part, townhouses and villas, Greens, start from just £711,000.
5: To book, call our London office on 020-396-35757. Greens by Danube. Prime location.
4: High appreciation.
5: In Dubai. Start to

0: to book now, visit starters.co.uk or call 0208-900-2323.
1: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए, दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सींग, डेजर्ट सफारी, यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम। साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे। तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दे डू द प्लानिंग। कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 0208-574-8410, दैट्स 8574-8410।
2: साफो ट्रेवल, ऑटो प्रोटेक्टेड। Leica Radio launches Birmingham wide on DAB from September 1st.
3: Lester Miller is back.
4: And the stage is about to explode. Confirmed artist
3: Lember Hussein Puri. Get ready for full Punjabi energy, Bhangra beats and live Mela vibes.
4: Hosted by the team of Leica Radio Network. Saturday 15th and Sunday 16th August at Abbey Park, Leicester.
3: An event by 101 Circle in association with Leicester City Council.
4: Arts Council England.

0: ऐसा होगा पर थोड़े बादल जरूर आज चक्कर लगाएंगे। शाम तक वैसे मौसम अधिकतर खुश रहने की संभावना ज्यादा है। लंदन में टेम्परेचर मैक्सिमम 24 डिग्री सेल्सियस और मिडलैंड में इट विल बी 21 डिग्री सेल्सियस।
1: फॉर स्पेशल रेट्स टू इंडिया, पाकिस्तान, दुबई, मालदीव्स, थाईलैंड, USA, कनाडा, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड कॉल साउथ ऑल ट्रैवल 24 आवर्स अ डे 7 डेज अ वीक ऑन 0208 574 8410।
2: मनोरंजन विद रवि शर्मा।

0: ¡Excelsior!
1: Good morning. स्वागत है, स्वागत है संगीत प्रेमियों का मनोरंजन की दुनिया में।

0: बरसों पुरानी ये धुन भाई, आपको शायद सोचते होंगे कि कहां से ली ये ट्यून जो पिछले लगभग नियरली 50 वर्षों से मेरा साथ निभा रही है, मेरी पहचान बनती जा रही है। कल्याण जी आनंद जी की बनाई धुन है। अब कौन से गीत से जुड़ी है ये आप ढूंढते रहिए। माय नेम इज रवि शर्मा और मैं आपकी सेवा में दोपहर बाद 1 बजे तक हाजिर हूँ। आज शुक्रवार वर्ष 2026 के अगस्त महीने की 7 तारीख और वक्त हो गया हमारी आपकी मुलाकात का। कीजिए स्वीकार मेरा प्यार और मोहब्बत भरा नमस्कार। गम की मौजों में डूबे तो तिनके को सहारा कर लेंगे, मिट्टी में ना रोलेंगे आंसू अशकों को सितारा कर लेंगे। अब बात मोहब्बत से बढ़कर मेरे जर्फ तलक आ पहुंची है, तू क्या ठुकराएगा हमको, हम खुद ही किनारा कर लेंगे। जिस तरह तेरा हर जुल्म सहा हंस हंस के पुराने यारों ने, तुम ये ना समझना वैसे ही नहीं यार गवारा कर लेंगे। गैरों को लगाकर सीने से तू गुलशन गुलशन घुमा कर हम दीवारों के शाने पर
1: Let's return to the biggest hits back to back. This is Leica Radio, broadcasting across the Midlands on DAB Digital Radio with a refreshing mix of Bollywood classics and latest chart toppers. Download the Leica Radio mobile app and listen wherever you are in the world. L Y C A. This is Leica.
0: भाई पहले लोग कहा करते थे कि शादी मत करना, शादी एक ऐसा लड्डू है जो खाए वो पछताए, जो ना खाए वो ललचाए। अब लोग मोहब्बत के बारे में भी ऐसा ही कहने लगे हैं कि मोहब्बत मत करना। क्यों भाई, अनुभव से कहते हैं

0: पता नहीं चलता कैसे बदल जाते हैं पल में ये दुनिया के बदलते रिश्ते। भाई हालात बदलते हैं, मौसम बदलते हैं, जमाना बदलता है, रिश्ते भी बदलते हैं और रास्ते भी बदलते हैं। ये भाई कड़वी सच्चाई है जीवन की। वाल दो गीत बैक टू बैक हमने परोसी, आपने स्वीकार किए और मुझे यकीन है कि आपने पसंद भी किए। तो दोनों गीत, भाई पहला गीत तो दिल का क्या करें साहेब, हम उन्हीं पे मरते हैं और जुर्म बस इतना है कि हम उनसे प्यार करते हैं, ये होता है। दैट वॉज कविता कृष्णमूर्ति और ये गीत फिल्म जीत से लिया था। दूसरा गीत ये दुनिया के बदलते रिश्ते, फिल्म का नाम भी यही था बदलते रिश्ते। किशोर कुमार और सुमन कल्याणपुर गा रहे थे इस गीत को। मुझे यकीन है घर भाइयों कार्यक्रम में शामिल गीत पसंद आ रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ये भी शायद कहना चाह रहे हैं कि शर्मा जी आज बृहस्पतिवार नहीं है, ये दर्द वर्द निकाल फेंको, आज मस्ती में आ जाओ, वीकेंड शुरू हो रहा है, कुछ ऐसा सुना जाओ कि हमारा वीकेंड जो है एकदम टिप टॉप हो जाए। हो जाएगा जी। पाउंड का रेट सुनो।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: SBI UK, State Bank of India UK. क्या रेट दे रहे हैं आज? भाई अपनों को पैसे भिजवाना चाहते हैं तो वो कहते हैं सही मौका है, रेट अच्छा है। आज का रेट एक पाउंड के बदले दे आर गिविंग 127.65 रुपीज, 127 रुपए और 65 पैसे भारतीय मुद्रा में। यू कैन ट्रांसफर वाया ब्रांच ऑनलाइन और बाय यूजिंग द योनो एसबीआई यूके मोबाइल ऐप। टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई।
1: स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यूके ऑफर्स सेविंग्स प्रोडक्ट्स, बिजनेस बैंकिंग, बाय टू लेट मॉर्गेजेस एंड सेफ डिपॉजिट लॉकर्स। विजिट sbiuk.statebank टू लोकेट योर नियरेस्ट ब्रांच। टीज एंड सीज अप्लाई। गेट ऑल द लेटेस्ट ट्रैवल अपडेट्स फॉर द मिडलैंड्स एट ब्रेकफास्ट एंड ड्राइव। ये है लाइका रेडियो।
2: This part of the show is brought to you by Dhurandhar.
3: Ladies and gentlemen, you are not ready for this.
2: Mega blockbuster Dhurandhar on Utsav Gold, 15th and 16th of August at 9 PM.
4: Leicester, तैयार हो जाओ एक यादगार बॉलीवुड नाइट के लिए। Jay's Entertainment presents Bollywood Legend live in concert featuring Bollywood actor Sanjay Kapoor, playback singer Aman Trika, और female singer Mayuri Patalia. Sunday, 27th of September, De Montfort Hall, Leicester. Doors open 6:30 PM, show starts 7 PM. Tickets, book kare demontforthall.co.uk
5: ya Mumbai Sandwich Station on 0116-332-0262 or call Mr. B on 0780-280-655. Exclusive radio partner, Leica Radio. Start.

मीलों की दूरी होती है भाई, दिलों की दूरी नहीं होनी चाहिए। लेकिन कभी कभी बहुत करीब होकर भी दिलों से बहुत दूर रहते हैं लोग, एक दूसरे से कटी रहती है जबकि बिल्कुल सटे रहती है। वेल, ऐसा देखने को मिलता है देशों के बीच। खबरों की ओर मुड़ रहे हैं हम। खबरों में भाई, शहबाज शरीफ के बाद तुर्की के प्रेसिडेंट अर्दोगान पहुंच रहे हैं सऊदी अरब। क्या कुछ बड़ा ऐलान होने वाला है? भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कल शाम इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू से बात हुई और इस बातचीत के दौरान पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ सऊदी अरब पहुंच चुके थे। कल वो पहुंचे, आज अर्दोगान पहुंच रहे हैं। भाई क्या कुछ हो रहा है, क्योंकि भारत के साथ इसराइल की दोस्ती जो है वो मुस्लिम देशों को चिंता में डालती है और इसलिए सऊदी अरब के पास पैसा है, पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर बम है और तुर्की के पास वल उसके पास भी सैनिक अनुभव है, तो इसलिए भाई ये बहुत कोई स्ट्रेटेजी तैयार कर रहे हैं कुछ बातचीत के लिए पहुंचे। इसके अलावा और क्या क्या है हमारे पास खबरों में, ये गीत पूरा सुन के आप संतुष्टि कीजिए, फिर आपको खबरें सुनवाते हैं।

0: Track. Brought to you by Derry Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: Manoranjan with Ravi Sharma. Like a radio.
3: Like a radio network. अब आप रवि शर्मा से आज की खास खास खबरें सुनिए। थाईलैंड से खबर आ रही है, वहां एक स्कूल में गोलीबारी की घटना में कम से कम 7 लोगों की मौत हो गई है और करीब 15 जख्मी हुए हैं। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक से सटे नानथाबुरी प्रांत में बैंकवाई जिले में एक स्कूल में गोलीबारी हुई है। इस गोलीबारी में 7 लोगों की मौत की खबर आ रही है। थाईलैंड के हेल्थ मिनिस्टर के मुताबिक आशंका है कि सस्पेक्ट ने स्कूल जाने से पहले अपने दादा और दादी की भी हत्या कर दी थी, क्योंकि उन दोनों के शव घर पर मिले हैं। थाईलैंड की हेल्थ मिनिस्ट्री ने बताया है कि स्कूल में हुई गोलीबारी में 5 टीचर्स भी मारे गए हैं। ये घटना एक स्टूडेंट ने अंजाम दी है। सस्पेक्ट स्टूडेंट ने गोलीबारी करने के बाद खुद को भी जिस बंदूक से गोली मारी वो उसके दादा की थी, जो पहले एक स्कूल टीचर थे। थाईलैंड के प्राइम मिनिस्टर ने स्कूल में हुई इस घटना की आलोचना की है। प्रयागराज में राहुल गांधी के कार्यक्रम का रास्ता साफ हो गया है। आपको बता दें कि वहां कायस्थ पाठशाला ने अपना फैसला बदल लिया है। पहले उनके प्रोग्राम को कैंसिल कर दिया गया था और पाठशाला ने उन्हें वहां प्रोग्राम करने की इजाजत नहीं दी थी, लेकिन अब केपी कॉलेज मैदान में कार्यक्रम की अनुमति दे दी गई है। इसके साथ ही राहुल गांधी के प्रयागराज दौरे से पहले प्रोग्राम स्थल को लेकर के जारी विवाद फिलहाल खत्म हो गया है। इजराइल के फॉरेन मिनिस्टर गिदोन सार ने कहा है कि तुर्की के फॉरेन मिनिस्टर हाकान फिदान ने इजराइल पर सीरिया को अस्थिर करने का आरोप लगाया है, जबकि इजराइल ने केवल अपने नागरिकों को हमलों से बचाने के लिए कुछ जरूरी कदम उठाए हैं। विदेश मंत्री गिदोन सार के बयान में कहा गया है कि तुर्की के यही नेता दशकों से सीरिया की सॉवरेंटी का उल्लंघन करते रहे हैं और साथ ही इंटरनेशनल कानून पर दूसरों को उपदेश देते रहे हैं। हुती के हमलों में यमन की फौज के कम से कम 30 जवानों की मौत की खबर आ रही है। सेंट्रल यमन में हुती विद्रोहियों की तरफ से फौजी कैंपों पर किए गए हमलों में यमन की सरकारी सेना के कम 30 जवानों के मारे जाने की खबर आ रही है। यह हाल के वर्षों में दोनों पक्षों के बीच हुई लड़ाई के सबसे घातक अटैक्स में से एक है। यमन की डिफेंस मिनिस्ट्री ने बताया है कि मारिब और हदरामाउत प्रांतों में कई फौजी कैंपों पर बैलिस्टिक मिसाइल्स और ड्रोन से हमला किया गया है। इन हमलों में कई सैनिकों की मौत हुई और कई जख्मी बताए जा रहे हैं। परिसीमन विधेयक यानी कॉन्स्टिट्यूएंसी की बाउंड्री दोबारा से तय करने के बिल को हिमायत देने के लिए डीएमके ने केंद्र सरकार के सामने अपनी शर्त रखी है। ये शर्तें ऐसे समय में सामने आई हैं जब केंद्रीय सरकार के बिल के लिए जरूरी समर्थन जुटाने के मकसद से विपक्षी दलों से संपर्क बढ़ रहे हैं। और क्रिकेट से जुड़ी एक खबर, भाई आज भारत और श्रीलंका की 11 टीम के साथ एक अभ्यास मैच खेला जा रहा है। इसमें कैप्टन शुभमन गिल जो है दाएं हाथ की फिंगर चोट के कारण नहीं खेल पा रहे हैं। शुभमन गिल एहतियात के तौर पर श्रीलंका 11 के खिलाफ ये प्रैक्टिस मैच नहीं खेलेंगे। उनकी गैर मौजूदगी में केएल राहुल टीम की कमान संभाल रहे हैं। भारत और श्रीलंका के बीच कोलंबो में 3 दिन का यह वार्म अप मैच खेला जा रहा है, जो आज से शुरू हो गया है। मैच में श्रीलंका 11 ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया है। श्रीलंका के खिलाफ भारत की क्रिकेट टीम 2 टेस्ट मैचों की एक सीरीज खेलने वाली है। इस सीरीज का पहला मैच 15 अगस्त से खेला जाएगा, जबकि दूसरा टेस्ट मैच 23 अगस्त से शुरू होगा। और भारत में आज नेशनल हथकरघा दिवस मनाया जा रहा है, हाथ से कपड़े बुनने का दिन। भल भाई, इसकी शुरुआत तो स्वतंत्रता संग्राम में हो गई थी, लेकिन अब यह हर साल मनाया जाता है। प्रधानमंत्री को आज हैंडलूम दिवस के अवसर पर सबकी तरफ से बधाई दी गई है प्रधानमंत्री के द्वारा, जबकि आज ही के दिन 7 अगस्त 1990 को उस समय के प्रधानमंत्री वीपी सिंह ने मंडल कमीशन की सिफारिशों को लागू करने की भी बात कही थी। हर साल 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस नेशनल हैंडलूम डे मनाया जा रहा है और कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर हैंडलूम दिवस को लेकर के एक संदेश दिया था, सबको बधाई दी थी। ये थे आज के प्रमुख समाचार। समाचार समाप्त होते हैं।
2: ये है Like a Radio Tasty Track of the Hour, brought to you by Coca Noodles.

कोई हेल्प करो इनकी, क्या चाहते हैं ये? ये गुम होना चाहते हैं। हाँ, अच्छा खासा रास्ता मालूम है इनके पास, नेविगेशन सिस्टम भी है। कहते हैं कोई हमें गलत रास्ते पे डाल दो, हमें रास्ता भुला दो।

0: tasty track of the hour. Sponsored by Coca Noodles. Just add hot water and enjoy Coca Noodles in 3 minutes.
1: Leica Radio. Holiday breaks are brought to you by Southall Travel.
2: वेरी गुड मॉर्निंग भाई. साउथ ऑल ट्रेवल का वो पैगाम आपके नाम हम फिर से दोहरा देते हैं. साउथ ऑल ट्रेवल इज प्लीज टू अनाउंस दैट द FCDO हैज लिफ्टेड इट्स एडवाइस अगेंस्ट ऑल बट एसेंशियल ट्रेवल टू दुबई. कॉल साउथ ऑल ट्रेवल फॉर द मोस्ट कम्पेटिटिव दुबई डील्स ऑन 0208 574 8410. एट ऑल प्रोटेक्टेड.

0: लग गया रोग, कहते हैं लोग ये मर जाएगी, ये सही कह रही है भाई, ये पहले भी कई बार मर चुकी है, बता दूं आपको।
1: ये है लाइका रेडियो। Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: Let me tell you the rates by LemFi mobile app जो है वो एक पाउंड के बदले दे रहे हैं भारतीय करेंसी में 127.99 रुपीस, पाकिस्तानी 373.54 रुपीस, श्रीलंकन रुपए 451.66, बांग्लादेशी टके 166.61 और अफगान अफगानी 88.05.
1: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LIKA. Download LemFi now. T's and C's apply.
2: Manoranjan with Ravi Sharma. LIKA Radio.
1: Gold Rate is brought to you by Ram Jewelers, Belgrave Road, Leicester. This is Leica Radio.
0: Gold Rate, नोट कीजिए, the gold is trading at the rate of, क्या बताएं साहब, ये तो ऊपर चलता जा रहा है, चढ़ता जा रहा है, 103.37 pounds per gram.
1: Ram Jewelers, specializing in diamond jewelry, platinum jewelry, 22 karat gold, white gold jewelry, coins and gold bullion bars. Visit Ram Jewelers on 116 Belgrave Road, Leicester, or call 0116 266 4278.
3: This part of the show is brought to you by 108 Base Hospital Uri. Starts 15th of August every Saturday and Sunday at 7 PM on Colors TV.
4: I hope Major Naina, हम लोग वक्त पर पहुँचे।
5: कुछ शामें कैलेंडर में नहीं, दिल में हमेशा के लिए बस जाती हैं। इंडियन आइडल फेम सुगंधा डाटे लेकर आ रही हैं एक यादगार म्यूजिकल इवनिंग लाइव इन कॉन्सर्ट। Saturday the 5th of September at the Platinum Suite, Leicester. Apni seats aaj hi reserve kijiye. For more information, call Mr. B on 07860-280655. Exclusive radio partner, Leica Radio Network.

स्वागत है आपका मनोरंजन कार्यक्रम के दूसरे दौर में। ये लाइका रेडियो नेटवर्क पर लाइका गोल्ड रेडियो है। इसके साथ ही आप लाइका रेडियो मिडलैंड भी सुन रहे हैं। हमारे कार्यक्रम वहां भी प्रसारित हो रहे हैं, ऑनलाइन, ऑन डीएबी और विभिन्न माध्यमों से दुनिया भर में पहुंच रहे हैं हमारे गीत, संगीत, बातचीत, सूचनाएं, समाचार। और इसीलिए भाई हमारे श्रोताओं की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। जो आंकड़े आए हैं वो बता रहे हैं लाइका रेडियो नेटवर्क कामयाबी की सीढ़ियों पर निरंतर बढ़ता जा रहा है। बधाई आप सबको, मुबारकबाद। समय चिंतन का है, थॉट फॉर द डे, आज का विचार। और आज का विचार जुड़ा है आज के त्योहार के साथ। भाई त्योहार कौन सा है आज? वाले एक राष्ट्रीय पर्व है भारत में, आज शुक्रवार 7 अगस्त। आज का दिन इतिहास और संस्कृति की नजर से बड़ा इंपॉर्टेंट है। आज के दिन भारत में एक स्वदेशी आंदोलन की हिस्टोरिकल शुरुआत हुई थी 1905 में। नोट कर लीजिए, 7 अगस्त 1905 को कोलकाता के टाउन हॉल में विदेशी चीजों के बहिष्कार और स्वदेशी चीजों को अपनाने का औपचारिक आह्वान, एक आंदोलन शुरू हुआ था। आज के चिंतन के लिए जिन लोगों ने आलेख भेजा है उनका धन्यवाद शुरू में भी कर दें, बाद में भी करेंगे। थैंक यू वेरी मच। मिसेस दिनेश कोहली लिखती हैं कि ये बहुत पुरानी बात है, पर इतनी भी पुरानी नहीं। आज भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत में इस स्वदेशी आंदोलन की याद दिलाई है, क्योंकि आज एक वहां पर भारत में कई सालों से चलता आ रहा त्योहार मनाया जा रहा है जिसे कहते हैं नेशनल हैंडलूम डे, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस। भाई ये जो हथकरघा दिवस है ये राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन का एक बड़ा महत्वपूर्ण हिस्सा बना था। हर साल 7 अगस्त को ये नेशनल हैंडलूम डे मनाया जाता है। वैसे इसका ऐलान 2015 में हुआ था, पर इसका संबंध स्वतंत्रता संग्राम से है। ये दिन भारत के बुनकरों, कारीगरों और सदियों पुरानी जो कपड़ा बनाने की ट्रेडिशन है उसको सम्मान देने का अवसर है। भारत की कल्चर में, संस्कृति में हथकरघा केवल कपड़ा नहीं है, हाथ से बना हुआ हैंडलूम ये हमारी पहचान है, परंपरा है और पीढ़ियों से चली आ रही कला का ताना बाना है। याद है कश्मीर की पश्मीना, गुजरात का पटोला, केरल की साड़ियां और बनारसी साड़ियां, भाई देश के अलग अलग हिस्सों की बुनाई उसकी वैरायटी को दर्शाती है। अब इसका सांस्कृतिक यानी कल्चरल मैसेज क्या है कि जिस हाथ ने धागा बुना है उसमें केवल हुनर नहीं है, पीढ़ियों की विरासत है। आज अगर हम हैंडलूम का कोई कपड़ा अपनाते हैं तो हम सिर्फ कपड़ा नहीं खरीदते, एक बुनकर की मेहनत, उसकी कला और हमारी सांस्कृतिक विरासत को हम इज्जत देते हैं, सम्मान देते हैं। भाई हाथ की बनी चीजें जो गांव से आती हैं, हाथ से बनाई जाती, उनमें वो बिना दिल वाली मशीन नहीं शामिल होती, उसमें भावनाएं होती हैं, फीलिंग्स होती हैं। जानते हैं दीपावली पर हम कहते हैं भाई मिट्टी के दिए जलाइए, यहां यूके में मिलते हैं, यूरोप में मिलते हैं, भारत से आते हैं। याद रखिए जब आप वो मिट्टी का दिया जलाते हैं ना तो आप किसी के घर का चूल्हा जलाते हैं, किसी के घर में रोशनी पहुंचाते हैं। आज 7 अगस्त है, ये भारत के इतिहास और संस्कृति दोनों को जोड़ता है। 1905 में इस दिन स्वदेशी आंदोलन ने एक नई शक्ति पाई थी। राष्ट्रीय हथकरघा या
बुनकर दिवस कह सकते हैं, उनकी कला को समर्पित है आज का दिन। मिसेस कोहली कहती है कि आज हम संकल्प लें कि अपनी मिट्टी में बने उत्पादों, अपने कारीगरों और अपनी विरासत का सम्मान करेंगे, क्योंकि अपनी चीज सिर्फ चीज नहीं है, स्वाभिमान की भावना है। जब मैं अपने यहां के जूते या अपने देश का कोई कपड़ा पहनता हूं, मैं अपने आप को अपनी मिट्टी के बहुत करीब, अपनी धरती के बहुत करीब, अपनी संस्कृति के और अपने देश के बहुत करीब महसूस करता हूं। कहते हैं कुछ आवाजें केवल सुनाई देती हैं और कुछ आवाजें दिल में उतर जाती हैं। एक छोटे से गांव में रामदास नाम का एक बुजुर्ग बुनकर रहता था, जो कपड़ा बुनता था। उसकी छोटी सी झोपड़ी में एक पुराना करघा रखा था। सुबह होते ही वो करघे की खट खट शुरू कर देता, कपड़ा बुनता था ना। एक दिन उसके ग्रैंडसन ने पूछा, दादा आप रोज इतने घंटे इस करघे पर बैठते हैं, क्या मिलता है आपको इस खट खट से, जबकि आजकल तो मशीनों से कपड़ा बुना जाता है, महीनों का काम मिनटों में होता है। तो बूढ़े ने कहा, बेटा मैं सिर्फ कपड़ा नहीं बुनता, मैं तो अपनी मिट्टी की कहानी सुनता हूं, मैं तो अपनी जिंदगी बुनता हूं। फिर उस बुजुर्ग ने, रामदास ने, हाथ में एक रंगीन धागा उठाया और कहा, देखो देखो ये धागा है, बहुत कमजोर है, लेकिन जब ऐसे हजारों धागे एक दूसरे से जुड़ते हैं तो मजबूत कपड़ा बनता है। ऐसा ही है हमारा देश, अलग अलग भाषाएं, अलग अलग पहनावे, अलग अलग परंपराएं, लेकिन सब मिलकर के एक मुल्क बनाते हैं। याद रखना बेटा, जब तुम अपने देश के कारीगर के हाथ से बनी कोई चीज खरीदोगे ना, तो तुम अपने लिए सम्मान खरीदोगे, तुम उनके घर का चूल्हा जलाओगे, उनके बच्चों के पढ़ाई में मदद करोगे और उस कला को अगली पीढ़ी तक पहुंचाओगे। पोता चुपचाप करघे को देखने लगा, वो कपड़ा बुनने का वो पुराना यंत्र और उस करघे की वो खटखट की आवाज अब उसको परेशान नहीं करती थी, बल्कि अब उसमें उसको संगीत सुनाई पड़ता था। ये नबद्धो बली राजा दानवेंद्रो महाबला, भाई धागे से हाथ में बांध करके हम एक रिश्ता बांधते हैं। राखी का त्योहार आ रहा है, समय पर राखी भिजवा दीजिएगा, बहनें भाइयों की कलाई पर सजा करके एक संकल्प दोहराती है। बहनों भाइयों, ये धागे बहुत कुछ बोलते हैं, बहुत कुछ बताते हैं, इन्हें सुनिए, महसूस कीजिए। हैप्पी नेशनल हैंडलूम डे। ये प्यार के धागे कभी तोड़िएगा नहीं, रेमंड धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, धागे बुनो, रिश्तों में बंधे रहो।

0: भारत में राष्ट्रीय कर्का दिवस के अवसर पर आज आप एक विचार सुन रहे थे चिंतन में। धागे कैसे जोड़ते हैं दिलों से दिलों को, धागे से धागे जोड़ करके हमारी इज्जत के रक्षक बनते हैं। लोक लज्जा निवारणार्थम वाससिम प्रतिगृह्यताम, एक धागा चढ़ाकर हम भगवान को वस्त्र अर्पण कर देते हैं। ये धागे सिंबॉलिक रिश्ते हैं और कैसे एक एक धागा जुड़ करके वस्त्र का निर्माण करता है। बहनों भाइयों, आज के चिंतन के लिए आलेख हमें भेजा था हाउंसलो से श्रीमती दिनेश कोहली ने, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और जो गीत आपने सुना दैट वॉज टेकन फ्रॉम द फिल्म घुंगरू, मनोहर उदास और साधना सरगम की आवाजें थी। और भाई ये बना आज का चिंतन थॉट फॉर द डे। राखी का त्योहार याद दिलाने के लिए भी भाई इस चिंतन का हम इस्तेमाल करते हैं। धागे याद दिला रहे हैं कि राखी के धागे पोस्ट कर दीजिए ताकि समय पर भाई की कलाई पर सज जाएं। आकलन करके भाई, वैसे तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं कि 27 को या 28 को, लेकिन यहाँ के विद्वानों का कहना कि 27 तारीख को यहाँ के हिसाब से कालगणना करने वाले हिसाब किताब लगा के कहते 27 अगस्त को राखी का त्योहार मिलकर मनाएंगे। उसके बाद जन्माष्टमी आ रही है तो भाई तीज त्योहारों के साथ भी हम आपको जोड़े रखेंगे। और राष्ट्रीय त्योहारों की बात करें तो 14 अगस्त को पाकिस्तान में यौम आजादी और 15 अगस्त को भारतीय स्वतंत्रता दिवस भारतवंशी मनाएंगे। लेकिन साहब 22 अगस्त को बड़ी धूमधाम से बहुत बड़े स्तर पर नवनेट सेंटर में इंडियन डायस्पोरा और भारतीय हाई कमीशन, जितने भी संस्थान हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कल्चरल सेंटर्स हैं, भारत की संस्कृति को प्रेजेंट करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे मंच पर। नवनेट सेंटर प्रिंटिंग हाउस लेन हेज में 22 अगस्त को दिन भर बड़ी रौनक रहेगी। राष्ट्रीय गीत गूंजेंगे, तिरंगा लहराया जाएगा, फ्री फूड होगा, स्टॉल्स लगे होंगे, मेला लगेगा, गीत संगीत नृत्य सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। तो फ्री एंटरटेनमेंट, फ्री फूड, फ्री एंट्री, फ्री पार्किंग, क्योंकि सब कुछ आपका है। भारतवंशियों का त्योहार है, पहुंचेगा। बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं भाई एडवांस में रक्षाबंधन की, जन्माष्टमी की, यौमे आजादी की पाकिस्तानियों को और भारतीय स्वतंत्रता दिवस की भारतवंशियों को। आज का चिंतन, आज का विचार अब समाप्त होता है। याद दिला दूं कि 11 बजे की खबरों के बाद हम चिंतन सुनवाते हैं हर रोज मंडे टू फ्राइडे। और हाँ, स्वागतम कहना चाहेंगे भाई, भारत से साधु संत आए हैं, धागे भाई जो जोड़ने का काम करते हैं ना वो संत भी करते हैं जोड़ने का काम। कहते विभिन्न संस्कृतियों को, विभिन्न धर्मों को, मजहबों को, भाषाओं को, कल्चर्स को, लैंग्वेजेस को जोड़ने के लिए हम विश्व भ्रमण करते हैं। हम यूके में आए हैं और 14 तारीख को हमारे राजराजेश्वर गुरुजी बहुत बड़ा आयोजन कर रहे हैं बायरन हॉल हैरो में। इसके अलावा आज बर्मिंगम में डडली में परम पूज्य संत त्रिलोचन दास जी के सानिध्य में भाई संत इकट्ठे हो रहे हैं। 25 से भी अधिक लोग हैं संत महात्मा भारत से आ रहे हैं, अपने विचार रखेंगे विश्व को जोड़ने में, वसुधैव कुटुंबकम की स्थापना में। वसुधैव यानी पूरी धरती, पूरा ब्रह्मांड एक परिवार है, हम सब एक ही ईश्वर की संतान है। बस यही विचार है जो हम सबको जोड़ेगा। चिंतन समाप्त होता है, लौटते हैं अब अपने मूल रंग के कार्यक्रम की ओर।
1: चिंतन चिंतन
2: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: State Bank of India UK giving 127.65 Indian rupees for £1. You can transfer via branch online or by using the Yono SBI UK mobile app. Aap apno ko paise bhijwa sakte hain. Terms and conditions apply.
2: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
3: Like a radio.
4: This part of the show is brought to you by Dhurandhar.
5: Ladies and gentlemen, you are not ready for this.
4: Mega blockbuster Dhurandhar on Utsav Gold, 15th and 16th of August at 9 p.m. Get ready, UK. Snil Grover is coming live with Gutti, Dr. Mashur Gulati, Rinku Babi, and more surprises on the night.
6: Expect music, madness, family entertainment, and non-stop laughter. Sunil Grover Live UK Tour 2026, happening on the 29th of October at the Over Arena Wembley in London.
4: 31st October, Mattioli Arena, Leicester. Produced by ImagineX Global and Tim's Media Productions.
6: Supporting mental health and well-being awareness. Tickets are on sale now via Ticketmaster, Eventbrite, and AXS.
4: For more information, contact 07585 801 801. Official radio partner, Leica Radio Network.
7: Celebrate Diwali at the iconic Royal Albert Hall.
8: Join legendary singer Kavita Krishna Murthy
7: live on Sunday the 1st of November. An unforgettable evening of spectacular Bollywood and devotional songs
8: with the Royal Philharmonic Concert Orchestra.
7: Get your tickets from royalalberthall.com and sanathanevents.org. Brought to you by Sanathan Events.
8: Exclusive radio partner, Leica Radio Network.
1: Southall Travel, 7 days a week. Southall Travel, 24 hours a day, we're at our peak.
9: Southall Travel invites you to the beautiful city of Dubai. Enjoy the great shopping experience, luxury hotels, water sports, golf courses, Gold Souk, desert safaris and Dhow Cruise. There's never been a better time to go to Dubai.
10: Call 0208 574 8410. 0208 574 8410.
1: Southall Travel can take you there.
11: Southall Travel, at all protected.
12: Leicester's iconic hot potato shop is now serving up fresh flavour at Foss Park. After 45 years on Belgrave Road, we've rolled in with another brand new Airstream trailer, serving piping hot loaded jacket potatoes and fresh cut chips made to order. Open 7 days a week with generous portions and unbeatable taste. Find us outside M&S next to the Barclays Hub. Look for the shiny Airstream and grab your favourite today. Hot Potato Shop, now at Foss Park.

0: और चकोरी चकोरी खाली पलक।
1: एक चोरनी एक चोर के घर करने चली है चोरी,
0: थोड़ी थोड़ी
1: क्या मिलेगा भाई? अरे बहुत सारा चोरी का सामान मिलेगा वहाँ। दो चोर फिल्म का गीत आप सुन रहे थे, और इससे पहले जो गीत हमने प्रोग्राम में शामिल किया वो लिया गया था फिल्म उस्ताद से। और बहन भाइयों, संगीत की महफिल सजी है लाइका रेडियो नेटवर्क पर। लाइका गोल्ड के गीत आप तक पहुंच रहे हैं विभिन्न माध्यमों से।
2: This is the Leica Radio Network across London, Manchester and the Midlands. Feel good track brought to you by Dairy Valley.
3: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: Track. Brought to you by Derry Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: Manoranjan with Ravi Sharma.
0: Like a Extra Podcast Update.
3: दिल अपना और प्रीत पराई फिल्म का गीत सुनवाने के बाद भाई मैं आपको लाइका एक्स्ट्रा के विषय में बता दूं, नया एपिसोड आ चुका है हमारे लाइका एक्स्ट्रा पर। भाई बहुत अच्छी जानकारी बड़े रोचक ढंग से प्रस्तुत की जाती है। इस बार जो एपिसोड आया है दिस इज होस्टेड बाय खुश और ये है इज एस्ट्रोलॉजी रियल और ए स्कैम। क्या कहेंगे आप भाई, अच्छी तरह से स्टडी करके, अध्ययन करके और खोज खोज के, ढूंढ ढूंढ के जो है उन्होंने रिसर्च करके इस पर जवाब ढूंढे हैं। आपको बता दूं कि एस्ट्रोलॉजी के बारे में कई लोगों का ख्याल है कि भाई बातें सच होती हैं और कई लोग मानते हैं कि सब ठगी है जी, लोग वो तुक्का लगाते हैं, कभी लग जाता है तो तीर, नहीं तो चल जाता है। लेकिन आपको कई लोगों का यह मानना है कि अगर आप अपना जन्म स्थान, जन्म तिथि, जन्म का समय, ये सब चीजें सही बताएं तो काफी भविष्यवाणियां जो है सटीक बैठती हैं, बिकॉज इट्स अ मैथमेटिक्स। और भाई अगर वहां कुछ गड़बड़ है तो नेचुरली प्रिडिक्शन जो है सही नहीं होंगी। लेकिन और भी बहुत बड़ा विज्ञान इसके पीछे है और वो क्या क्या है डिस्कस किया है खुश ने, हमारी खुश जो है बहुत खुश है इसे प्रस्तुत करके। इज एस्ट्रोलॉजी रियल और ए स्कैम, देखने के लिए यू कैन विजिट अवर लाइका एक्स्ट्रा। दिस इज पॉडकास्ट जो है दैट्स अवेलेबल ऑन स्पॉटिफाई, यूट्यूब, अमेजन, एप्पल और दूसरे जो मेजर स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स हैं वहां ये उपलब्ध है।
0: लाइका एक्स्ट्रा इज हियर। गेट ऑल द लेटेस्ट ट्रैवल अपडेट्स फॉर द मिडलैंड्स एट ब्रेकफास्ट एंड ड्राइव। ये है लाइका रेडियो।
4: लेस्टर, तैयार हो जाओ एक यादगार बॉलीवुड नाइट के लिए। जेज एंटरटेनमेंट प्रेजेंट्स बॉलीवुड लेजेंड लाइव इन कॉन्सर्ट फीचरिंग बॉलीवुड एक्टर संजय कपूर, प्लेबैक सिंगर अमन त्रिका और फीमेल सिंगर मयूरी पटालिया। संडे 27th ऑफ सितंबर, डी मॉन्टफोर्ट हॉल, लेस्टर। डोर्स ओपन 6:30 PM, शो स्टार्ट्स 7 PM। टिकट्स बुक करें demontforthall.co.uk
5: या मुंबई सैंडविच स्टेशन ऑन 0116-332-0262 और कॉल मिस्टर बी ऑन 0786028-0655। एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर लाइका रेडियो।
6: लोकेशन लोकेशन लोकेशन
7: इन रियल एस्टेट, लोकेशन इज एवरीथिंग एंड दिस वन इज अ विनर।
6: इंट्रोड्यूसिंग ग्रीन्स बाय डैनियो, अ प्रीमियम कलेक्शन ऑफ टाउनहाउसेस एंड विलास
7: लोकेटेड इन दुबई इन अ प्राइम लोकेशन फॉर हाई अप्रिसिएशन।
6: स्टेप इनसाइड एंड वॉक इन टू fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
7: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
6: And the best part, townhouses and villas greens start from just £711,000.
7: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danube, prime location,
6: high appreciation
7: in Dubai.
8: क्या आप नर्स, फिजियोथेरेपिस्ट, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट या पैरामेडिक हैं? क्या आप ऑफिस आवर्स में काम करना चाहते हैं जहां हर वीकेंड छुट्टी हो और नाइट शिफ्ट बिल्कुल न करनी पड़े? कैपिटा में हम मिडलैंड्स की विभिन्न लोकेशंस के लिए हाइब्रिड क्लिनिकल असेसर्स की भर्ती कर रहे हैं। एरिया से बाहर रहने वालों के लिए रिमोट वर्किंग की सुविधा भी उपलब्ध है। शुरुआती सैलरी है £39,500, साथ में पूरी ट्रेनिंग, लगातार CPD सपोर्ट और कई अन्य बेनिफिट्स। दिलचस्पी है, आज ही सर्च करें कैपिटा हेल्थ असेसमेंट जॉब्स।
9: No need to fly back home this summer holiday. Come to Ambala and try out our Khoya Barfi, made from pure buffalo milk. Yes, it's the same barfi you get back home, now made in England with milk from Ambala's own herd of buffalo. Only from Ambala. Don't take our word for it. Come and taste it for free this month. Now also doing the best kara chai, masala chai and elaichi chai. Just like back at home. Ambala, heritage you can taste. Visit Ambala.com. astrology.co.uk.
10: After the smash hit run in 2025, Surrenderella is back for 2026. From the producers of Britain's Got Bungalow and The Deranged Marriage, Rifko Theatre Company turned this classic Panto tale on its head and give it an exciting dizzy twist.
11: Be sure to catch the show across the Midlands, the Belgrade Theatre Coventry, Thursday the 16th to Sunday the 19th of July, and at the Crescent Theatre Birmingham, Wednesday the 9th to Saturday the 12th of September, and Wednesday the 30th of September to Saturday the 3rd of October.
10: Click rifkotheatre.com for more info, and with tickets from just £15, make sure you book before the clock strikes midnight.
12: None eaten, get ready. Pepe's Piri Piri is firing up something big. Our store is now open, from flame grilled chicken to mouth-watering wraps. It's bold, it's spicy, it's pure Pepe's. Visit us at 126 Abbey Street, CV11 5BZ. Pepe's Piri Piri, Pepe-licious.
13: एक ऐतिहासिक अने दिव्य अवसर पेरिस मा भव्य BAPS स्वामीनारायण मंदिर ना ग्रैंड ओपनिंग मा दर्शन नो लाभ आप पवित्र यात्रा मा जोड़ाओ आपना परिवार साथे जहां मळशे शांति भक्ति अने आनंद अने साथे आईफिल टावर सेन रिवर क्रूज अने पेरिस सिटी टूर नो आनंद मानो डिपार्चर 5 सितंबर ना मंत्रा हॉलीडेज कॉल करो 0203-773-6333 मंत्रा हॉलीडेज व्हाट्स योर ट्रैवल मंत्रा
14: Creative Team Events and Peace Nation UK brings to you the King of Sufi Music, Lakhvinder Vidali, to London and Birmingham. This October, for sponsorship inquiries, call 07959-250-376.
0: Leica Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan.
15: If I'm going out on my new paddleboard, the last thing I'm taking is my phone, right? Buoyancy aid, fine. But mobile? My whole life's on that phone. Why would I risk losing it in the... Coast Guard, help!
16: Okay, help's on its way.
17: Grab my hand!
15: Phone. In a waterproof pouch. It's the first thing I pack now.
18: In an emergency at the coast, call 999 and ask for the Coast Guard. And please, respect the water.
19: Leica Gold. London ka number one Asian retro music station. Ab available hai Greater London mein 10:35 AM par. DAB Digital Radio par. Alexa pe bolo play Leica Gold. Aur online suno leicagold.com pe.

0: ये आवाज पहचानते हैं आप, नाम है परवीन सुल्ताना। गजलों के लिए, ठुमरी के लिए और भाई कितने तरह के वो शास्त्रीय संगीत के लिए जानी मानी आवाज है। कुछ गायिकाएं ऐसी हैं साहब, उन्होंने अलग अलग विधाओं में गाया है, फिल्मों में उनका उतना रिप्रेजेंटेशन नहीं हुआ है, लेकिन जो भी गाया है वो छाया है।
1: Hello, hello, hello. Wake up with me, Kajal, on the breakfast show where I take you down memory lane. Get inspired by morning mantra, Monday to Friday, 6 a.m. to 10 a.m. Like a gold and like a radium midlands.
0: करेंसी रेट्स बता रहा हूँ भाई आपको, लैम्फाई की ओर से जो रेट्स दिए जा रहे हैं नोट कीजिए, और अपनों को पैसे भिजवाना चाहते हैं तो उनकी ऑफर्स का फायदा उठाइए। टुडे फॉर £1 इन इंडियन करेंसी दे आर गिविंग 127.89 रुपीस, पाकिस्तानी 373.53 रुपीस, श्रीलंकन रुपए 451.68, बांग्लादेशी टके 166.58 एंड अफगानी 88.02.
2: Leica Radio. Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code Leica. Download LemFi now. T's and C's apply.
3: Manoranjan with Ravi Sharma. Leica Radio.
2: Gold Rate is brought to you by Ram Jewelers, Belgrave Road, Leicester. This is Leica Radio.
0: सोने का भाव क्या बताएं साहब, ये तो ऊपर जा रहा है। आज सोना 103.46 pounds का एक ग्राम मिल रहा है।
2: Ram Jewelers, specializing in diamond jewelry, platinum jewelry, 22 karat gold, white gold jewelry, coins and gold bullion bars. Visit Ram Jewelers on 116 Belgrave Road, Leicester, or call 0116 266 4278.
4: This part of the show is brought to you by 108 Base Hospital Uri. Starts 15th of August every Saturday and Sunday at 7 p.m. on Colors TV.
5: I hope Major Naina, hum log waqt par pahunche.
6: Leicester Falcon Cash and Carry Festive Shopping का परफेक्ट डेस्टिनेशन। राखी और गणेश आइडल्स अब अवेलेबल हैं सभी फेल्कन स्टोर्स पर। ओनम संध्या के लिए प्री बुकिंग भी शुरू हो चुकी हैं। फेल्कन स्नैक्स 300 ग्राम्स की फुल रेंज सिर्फ £1.99 ईच। मुस्तफा देहरादूनी राइस 20 LBS सिर्फ 13.49। सुहाना खमन ठोकला 500 ग्राम्स सिर्फ £1.99 ईच या 2 for £2.99। टिल्डा ग्रैंड बासमती 20 kg सिर्फ £29.96। एस मोतीराम नमकीन अब सिर्फ

0: 1955 में जन्मे थे सुरेश वाडकर।
1: सपने में मिलता है वो मुंडा मेरा, सपने में मिलता है।
0: 71 की हो गई है आज। जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई सुरेश भाई।

0: सुरेश ईश्वर वाडकर 7 अगस्त 1955 में जन्मे थे भाई, कोल्हापुर में, महाराष्ट्र में। पद्मश्री सुरेश वाडकर भाई, उन्हें सम्मानित भी किया जा चुका है भारत सरकार से, और भी बहुत सारे अवार्ड उनके नाम हैं। आज अपना जन्मदिन मना रहे हैं और हम उन तक बहुत सारी शुभकामनाएं उनके प्रशंसकों की ओर से भिजवा रहे हैं।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: State Bank of India UK. उनका आज का रेट नोट कीजिए, और भाई अपनों को भारत में पैसे भिजवाना चाहते हैं तो फायदा उठाइए उनकी सेवाओं का। आज एक पाउंड के बदले वो दे रहे हैं 127 रुपए और 65 पैसे अधिकतम। यस, 127.65 मैक्सिमम दे आर गिविंग फॉर 1 पाउंड। यू कैन ट्रांसफर वाया ब्रांच ऑनलाइन और बाय यूजिंग द योनो एसबीआई यूके मोबाइल ऐप। TNC अप्लाई।
1: स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यूके ऑफर्स सेविंग्स प्रोडक्ट्स, बिजनेस बैंकिंग, बाय टू लेट मॉर्गेजेस एंड सेफ डिपॉजिट लॉकर्स। विजिट sbiuk.statebank टू लोकेट योर नियरेस्ट ब्रांच। T's and C's अप्लाई। Like a Radio. This part of the show is brought to you by Dhurandhar.
2: Ladies and gentlemen, you are not ready for this.
1: Mega blockbuster Dhurandhar on Utsav Gold, 15th and 16th of August at 9 PM.
3: Leicester Falcon Cash and Carry, festive shopping ka perfect destination. Rakhi aur Ganesh Idols ab available hain sabhi Falcon stores par. Onam Sandhya ke liye pre-bookings bhi shuru ho chuki hain. Falcon Snacks 300 grams ki full range, sirf £1.99 each. Mustafa Dehraduni Rice 20 LBS, sirf £13.49. Suhana Khaman Tokla 500 grams, sirf £1.99 each, ya 2 for £2.99. Tilda Grand Basmati 20 kg, sirf £29.96. S Motiram Namkeen ab sirf 99 se shuru. Aur Herdsman Butter Ghee 20 kg, sir, $10.99.
4: Falcon Cash and Carry, 82A, Syston Street West, Leicester, LE1 2JU, and 2A, Rollout Sale, Leicester, LE5 4UN. Start.

0: now visit starters.co.uk or call 0208-900-2323.
1: Location, location, location.
2: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
1: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas.
2: Located in Dubai, in a prime location for high appreciation.
1: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
2: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
1: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
2: To book, call our London office on 02039635757. Greens by Daniel. Prime location.
1: High appreciation.
2: In Dubai.
3: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए दुबई की शान फ्लाइट होटल साइट सीइंग डेजर्ट सफारी यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे तो दुबई के लिए तैयार यू डू द पैकिंग दिल डू द प्लानिंग कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 02085748410 दैट्स 85748410
4: साउथ हॉल ट्रेवल ऑटो प्रोटेक्ट
5: No need to fly back home this summer holiday. Come to Ambala and try out our Khoya Barfi, made from pure buffalo milk. Yes, it's the same barfi you get back home. Now made in England with milk from Ambala's own herd of buffalo. Only from Ambala. Don't take our word for it. Come and taste it for free this month. Now also doing the best kara chai, masala chai and elaichi chai. Just like back at home. Ambala, heritage you can taste. Visit ambala.co.uk.
6: Pepe's Piri Piri is firing up its 258th store at 3 Tons Parade on Stafford Road, Wolverhampton. Get ready for flame-grilled chicken, mouth-watering burgers, wraps, rice boxes, and the bold Pepe's flavor you love. Now serving at Wolverhampton 3 Tons Parade. Pepe's Piri Piri. Taste the flame.
7: It was just another day. A familiar drive through familiar country. But then, just around the corner, came the unexpected. He'd let his speed creep a little too high as he approached a bend, and he was no longer driving at the right speed for the road. The scary thing is, he didn't even realize. Driving even a little too fast for the situation is a major cause of collisions, especially on country roads where you don't know what's around the corner. Think. Don't let your speed creep.
8: Cutthroat Ke Khiladi, Saturday and Sunday at 8 PM on Colours TV. Powered by Star Tours, associate sponsor Lioncroft.
9: Cutthroat Ke Khiladi.
10: Laika Gold, officially London's number one Asian retro music station. Available in Greater London on 10:35 AM, DAB Digital Radio, Alexa and LaikaGold.com.
11: Artist of the Week is brought to you by our new podcast, Laika Extra. Stream it now and be a part of the conversation.
12: My Artist of the Week is सप्ताह है आप उनकी फिल्मों के गीत सुनते रहे हैं विश्वजीत चटर्जी भाई विश्वजीत 90 वर्ष के हो जाएंगे इस जन्मदिन पर और वो रिटायरमेंट एंजॉय कर रहे हैं लेकिन कभी कभार भाई वो फिल्मी कार्यक्रमों में नजर आ जाते हैं कहीं किसी रूप में कभी किसी रूप में और काफी बुजुर्ग हो गए हैं तो नेचुरली अब उतने एक्टिव तो नहीं है लेकिन साहब विश्वजीत की फिल्मों के गीत हमारे श्रोताओं ने एंजॉय किए और मुझसे अगर पूछा जाए कि भाई मेरा फेवरेट गीत कौन सा है तो वो तो मैं आज नहीं बजाऊंगा क्योंकि अपना अपनी पसंद का आज मैं वो गीत बजाना चाहता हूं जिसे हमारी जो लिसनर हैं उन्होंने पसंद किया और कहती हैं कि बहुत प्यारा है क्योंकि इसे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने नहीं बल्कि प्यारेलाल के भाई ने संवारा है संगीत से फिल्म का नाम है शरारत तो नैना शाह आप हमेशा हमें गीत सुझाती हैं बताती हैं और सुन नहीं पाती हैं सुनवा नहीं पाती हैं आज आपका सुझाया गीत म्यूजिक डायरेक्शन गणेश जी

0: विश्वजीत आर्टिस्ट ऑफ द वीक, भाई मेरे कार्यक्रम में तो एज आर्टिस्ट ऑफ द वीक ये आखिरी पेशकश थी, प्रेजेंटेशन थी विश्वजीत के लिए। हम उनकी लंबी उम्र की दुआ के साथ समेटते हैं उनकी इस फिल्मी गीत को जो हमें नैना शाह ने सुझाया था। नैना जी भेजती रहा करें आप अपने सुझाव, बहुत कारगर हैं, बिल्कुल हमारे वो मित्र हैं जो उनकी तरह से। तो अब भाई एक और गीत हम प्रोग्राम में शामिल करेंगे और ये आ रहा है स्पॉन्सर्ड गीत।
1: Feel good track. Brought to you by Dairy Valley.
2: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.
0: और बहनों भाइयों ये गीत जा रहा है उस नौजवान के नाम जो इस समय ट्रक चला रहे हैं और लाइक गोल्ड रेडियो के गीतों को एंजॉय भी कर रहे हैं, पर कहते हैं मैं जींद का सूं हरियाणा का, कोई सामन का गीत बगा देना शर्मा जी, बगा दूंगा पर कैच कर लिए। सावन की रुत है और सावन के महीने में भाई झूला झूलती हुई हरियाणवी महिलाएं वो इस तरह का गीत गुनगुनाती हैं कि वक्त जैसे ठहर जाता है।

पवन घनौरी जींद वाले की फरमाइश पर। और पवन भाई जरा ट्रक है, सावधानी से चलाइएगा, स्टेयरिंग पर कंट्रोल रखिएगा।

0: ये लोग धुने भाई दबी छुपी जो है फिल्मी दुनिया में भी पहुंच जाती हैं, दूसरे लोग भी इनको इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन इन्हें भाई ढूंढ कर सजा कर सवार कर निखार कर प्रस्तुत करने की जिम्मेदारी आजकल निभा रहे हैं हरविंदर मलिक। और हरविंदर मलिक इस समय अमेरिका में सैन फ्रांसिस्को में अपनी पेंटिंग की प्रदर्शनी के लिए पहुंचे हुए, वहां सुन रहे हैं, औरों को भी सुनवा रहे हैं। और भाई ये गीत हम आपके भी नाम लगा रहे हैं, क्या प्रोडक्शन है, क्या कंपोजिशन है, और लोक धुन को सवार कर जिस तरह से आपने निखार करके भाई प्रस्तुत किया है, थैंक यू वेरी मच हरविंदर मलिक।
1: फील गुड ट्रैक brought to you by Derry Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
3: Leica Radio.
4: This super hit song is proudly sponsored by Tilda Basmati Rice. Discover the serious delicious possibilities with Tilda.

0: चुरा सकूं कि मैं बड़ी मुश्किल में हूं, मैं बड़ी मुश्किल में हूं।
1: भाई मुश्किलटी में तो मैं फंसा हुआ हूँ, इतने सारे मैसेज आकर के चिपक गए हैं स्क्रीन पर, मैं सबको शामिल नहीं कर पा रहा हूँ। ये भला मुझे माफ करेंगे मेरे श्रोता, मेरे प्यारे प्यारे श्रोता, न्यारे न्यारे श्रोता कितनी अच्छी अच्छी बातें लिख रहे हैं। लिखते हैं हम सफर में हैं और आप हमारे सफर को हम सफर बनकर शानदार और जानदार सफर बना रहे हैं, क्या बात है। Holiday breaks are brought to you by South Hall Travel. साउथ हॉल ट्रेवल वालों कहिए कि भाई ये बात आपको फिर याद दिला दूं, कह रहे हैं कि वो जो एडवाइस थी ना FCDO की, अरे वो दुबई के बारे में, भाई वो कहते हैं अब आप दुबई की यात्रा कर सकते हैं खुल के बड़े आराम से, जितना जी बार चाहें दुबई आए। कॉल साउथ हॉल ट्रेवल फॉर द मोस्ट कम्पिटिटिव दुबई डील्स ऑन 0208 574 8410 एट ऑल प्रोटेक्टेड।

0: भाई प्रार्थना का रूप कोई भी हो लेकिन उसका रिश्ता दिल से होता है, दिल से निकलती हुई दुआएं कबूल होती हैं। और हमारे तमाम श्रोताओं के लिए, सामयिन के लिए भाई ये दुआएं प्रार्थनाएं हैं, ऊपर वाले को कबूल और आपके घरों में सुख शांति निवास करे। इस दुआ के साथ आगे बढ़ते हैं।
1: Buy Coca Noodles. Quick, tasty, healthy flavors. Perfect for my busy day. Available in your nearest convenience store.
2: Manoranjan with Ravi Sharma. Like a radio.
3: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: And let me tell you the swiftly के रेट भाई इस समय एक पाउंड के बदले इन डिफरेंट करेंसीज दे आर गिविंग भारतीय मुद्रा में इंडियन करेंसी में 127.98 रुपीस फॉर वन पाउंड, पाकिस्तानी करेंसी में एक पाउंड के बदले 373.34 रुपीस दे रहे हैं, श्रीलंकन रुपए 450.98, बांग्लादेशी टके 166.44, अफगानी 88.07 और केनियन शिलिंग्स एग्जैक्टली 174 फॉर वन पाउंड।
3: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LIKA. Download LemFi now. T's and C's apply. This is LIKA Radio across the Midlands. Gold Rate is brought to you by Ram Jewelers, Belgrave Road, Leicester. This is LIKA Radio.
0: Well, the gold is sold at the rate of 103.47 pounds per gram.
3: Ram Jewelers, specializing in diamond jewelry, platinum jewelry, 22 karat gold, white gold jewelry, coins and gold bullion bars. Visit Ram Jewelers on 116 Belgrave Road, Leicester, or call 0116-266-4278.
0: आज किसका जन्मदिन है?
4: ओ जियो जियो मेरे लाल तेरी टेढ़ी टेढ़ी चाल, तूने आज खेल खेल में कमाल कर दिया, ओ मार मार दुश्मनों का।
0: सुरेश वाडकर अपना जन्मदिन मना रहे हैं, वो तो हम आपको बता चुके हैं, लेकिन उनके अलावा भाई आज और भी किसी का जन्मदिन है। एक अपने पुराने भाई कॉमेडियन, वो उनका स्टाइल सुनकर के आप पहचान जाएंगे, वो ऐसे बोलते
5: मेरे को मैंने भी नहीं है। आप कौन कह रहे हैं साहब? कौन कह रहा है कि मैंने पी है? साहब पी थी वो तो उतर गई है।
6: आवाज की दुनिया के दोस्तों, आप सुन रहे हैं मनोरंजन प्रोग्राम आपके अपने प्रेजेंटर रवि शर्मा के साथ।
5: रवि शर्मा नहीं, मेरे को कैस्ट्रो मुखर्जी बोल।
0: कैस्ट्रो मुखर्जी आज दुनिया में होते तो अपना जन्मदिन मना रहे होते भाई। 7 अगस्त 1905 में मुंबई में जन्मे थे कैस्ट्रो मुखर्जी, एक शराबी की भूमिका में जबरदस्त जो है वो रोल अदा करते थे। राजमोहन गांधी, महात्मा गांधी के ग्रैंडसन, वो भी भाई 1935 में अगस्त 7 को ही जन्मे थे, राजमोहन गांधी। इसके अलावा और भी कई लोग भाई आज जन्मदिन मना रहे हैं। ओम प्रकाश जिंदल एक नाम है, हरियाणा के बहुत बड़े उद्योगपति और राजनीति में भी दखलंदाजी रही उनकी, उनकी पत्नी उनका बेटा वो भी राजनीति में है। हिसार में जन्मे थे इंडस्ट्रियलिस्ट ओम प्रकाश जिंदल, एक हेलीकॉप्टर एक्सीडेंट में उनकी डेथ हुई और उनके साथ ही डेथ हो गई बंसीलाल के बेटे सुरेंद्र की भी, सुरेंद्र टाली। ये भाई दोनों हेलीकॉप्टर में सवार थे जब इनकी मृत्यु हुई दुर्घटना में। तो आज ओपी जिंदल साहब का भी जन्मदिन पड़ता है, 1930 में जन्मे थे हिसार में हरियाणा में। और भाई अगर आपके घर परिवार में किसी का जन्मदिन हो तो हमारी ओर से मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे।
7: अरे नहीं पल भर देर लगाता हूँ, अरे मैनेजर को बुलवाता

0: to Laika Radio 90s. 90s. On Laika Radio mobile app, laikaradio.com and Alexa. Play Laika Radio 90s. Manoranjan with Ravi Sharma.
1: That's it, बहनों भाइयों, ये था आज का मनोरंजन प्रोग्राम और अब रवि शर्मा आपसे इजाजत चाहेगा। चांद चेहरों पे घटा गम की छाई होती है, सिसकियां लब पे नजर डबडबाई होती है, कोई शय इस कदर बेदर्द नहीं हो सकती, मेरे ख्याल में यही जुदाई होती है। जुदाई की घड़ी आ गई और लंबा वही अंतराल है, वीकेंड बीच में आ गया है, तो अब अगले दो दिनों के लिए रवि शर्मा को याद कीजिएगा और याद आइएगा, मुझे कहीं भूल मत जाइएगा।

0: Okay, we are into Friday, and this is 7th of August, Friday, Sizzling Friday. It's the 219th day of 2026. How are you? Better than me. मैं इधर एसी में बैठा हूँ और आप गार्डन में बैठे होंगे या किचन में कोई मजे से कुकिंग कर रहा होगा और मेरे चटपटे गाने सुन रहे होंगे. सो आज क्या क्या होने वाला है? अच्छा ही होने वाला है ऑफ कोर्स, एंड आई डू वर्क हार्ड अपॉन प्लीजिंग यू ऑल. बट जे ओम प्रकाश की अगर मैं बात करूं तो जय ओम प्रकाश, जे ए वाई ओम प्रकाश. सो बट दुनिया उनको जे ओम प्रकाश के नाम से जानती है, या तो ओम जी सब बोलते थे. बोर्न ऑन 24th ऑफ जनवरी 1926 इन सियालकोट, विच इज नाउ इन पाकिस्तान, एंड 7th ऑगस्ट 2019 पास्ड अवे एट द एज ऑफ 93 इन मुंबई. अ प्रोड्यूसर, अ डायरेक्टर, अ फिल्म मेकर, सब डबल ए और ए से ब्रांड नेम. सारे फिल्में जितनी थी या तो डबल ए और सिंगल ए, लेकिन ए से शुरुआत. एक्सेप्ट देयर वर टू फिल्म्स, भगवान दादा, ही वाज द डायरेक्टर. वो फिल्म का टाइटल था भगवान दादा, एंड ही वाज द डायरेक्टर इन दैट वन. एंड राजा एज अ प्रोड्यूसर, राजा जानी जो फिल्म थी उसमें वो प्रोड्यूसर थे, डायरेक्टर नहीं थे. सो फिल्म्स एज अ डायरेक्टर, आपकी कसम, आक्रमण, अपनापन, आंधी, आशिक हूं बहारों का, आशा, आसपास, अपना बना लो, देन आसरा प्यार दा, ओ पंजाबी फिल्म थी बाय द वे, अर्पण, एंड देन आखिर क्यों, एंड देन आपके साथ. फिर आई भगवान दादा 1986 में, जहां पे ही चेंज फ्रॉम ए टू बी. लेकिन जैसे मैंने आपको कहा कि एज अ डायरेक्टर, एंड देन अग्नि वॉज ऑल्सो प्रोड्यूस्ड बाई हिम. मैनी फिल्म वर प्रोड्यूस्ड बाई हिम टू, यू नो, आदमी और अप्सरा, फिर अजीब दास्तां है, ये आदमी खिलौना है, वो डायरेक्ट की थी इन्होंने. सो देखा जाए तो इनकी करियर के बारे में, हिज फिल्म प्रोडक्शन कंपनी नेम्ड एज फिल्म युग. फिल्म युग, आप जब भी कोई फिल्में देखेंगे ये सब, तो वहाँ पे फिल्म युग प्रेजेंट्स, यू नो, मतलब एज ऑफ फिल्म्स, फिल्म युग. 1961 की फिल्म आस का पंछी वाज अ सिल्वर जुबली हिट, एंड द कंपनी प्रोड्यूस्ड फिल्म्स टिल मिड 90s. ही साइंड लक्ष्मीकांत प्यारेलाल फॉर आए दिन बहार के, स्टारिंग धर्मेंद्र एंड आशा पारेख. वो पहली फिल्म थी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जो विद बिग स्टार्स. ऑफ कोर्स उनको फिल्म दोस्ती में अवार्ड्स मिले थे, लेकिन स्टार्स बड़े नहीं थे, दे वर ओके. सो वी हैव लक्ष्मीकांत प्यारेलाल विद बिग स्टार्स इन द फिल्म आए दिन बहार के. किसने चांस दिया? जे ओम प्रकाश ने. एंड लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के साथ जे ओम प्रकाश का जो एसोसिएशन बना, दैट लास्टेड फॉर 22 years. 22 साल तक इन्होंने 26 फिल्में की, टिल अग्नि फिल्म 1988 में, एंड 12 फिल्में एलपी एंड लिरिसिस्ट आनंद बख्शी की थी. उसमें से लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और आनंद बख्शी ऐसे जुड़े हुए थे, और 12 फिल्में उन्होंने जे ओम प्रकाश की साथ में की थी. And president of IMPA and Film Producers Guild for 6 years, elected as president. मतलब ये एक क्या होता है, आदमी जब रिटायर हो जाता है तो उसको मान पान मिलता है, यानी कि president of IMPA बनाया, a trustee of artists welfare funds, participated in advisory panels, ऐसे ऐसे. So इनके गाने हम सुन रहे हैं. इनकी daughter Pinky, married to Rakesh Roshan, of course, and आगे बढ़ेंगे, उनके गाने सुनेंगे. He was active from 1961 to 2019 at the for 58 years of his life. So चलो आगे बढ़ते हैं, उनके गाने सुनेंगे और मजा करेंगे. In the second hour, the start is very sad. एक 10 साल का बच्चा देख रहा है कि कुछ लोग उसके डैडी को और अंकल को का कत्ल कर रहे हैं, 10 साल का बच्चा, और वो दुख झेलता हुआ बड़ा हुआ और इसने कैसे गाने लिखे और कैसा बड़ा एक राइटर बन गया. सेकेंड आवर गुलशन बावरा.
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: Your £1 in British sterling can get you, let's say, 127.65. 127.65 Indian rupees. Don't forget to exchange in branch, online or SBI Yono mobile app. TNCs apply.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
2: You're listening to Bali Brahmert in Gold Afternoons. Gold Afternoons. Proudly sponsored by Gemin Foods. Quality, taste and tradition in every pack. Find your favorites at Asian shops near you.
3: This part of the show is brought to you by Dhurandhar.
4: Ladies and gentlemen, you are not ready for this.
3: Mega blockbuster Dhurandhar on Utsav Gold, 15th and 16th of August at 9 PM. One performer.
5: Countless personalities.
3: A whole universe of entertainment.
5: Sunil Grover, live UK Tour 2026.
3: 29th October, Ovo Arena, Wembley, London. 31st October, Mattioli Arena, Leicester.
5: From Gutti to Dr. Mashur Gulati, from Rinku Bhabi to brand new surprises, experience Sunil Grover live on stage in the UK.
3: Produced by ImagineX Global and Tim's Media Productions.
5: Supporting mental health and well-being awareness. Tickets are on sale now via Ticketmaster, Eventbrite and AXS.
3: For more information, contact 07585 801 801. Official radio partner, Leica Radio Network.
6: Location, location, location.
7: In real estate, location is everything, and this one is a winner.
6: Introducing Greens by Danio, a premium collection of townhouses and villas
7: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
6: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
7: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
6: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
7: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danube. Prime location,
6: high appreciation
7: in Dubai.
8: Leicester's iconic hot potato shop is now serving up fresh flavour at Foss Park. After 45 years on Belgrave Road, we've rolled in with another brand new Airstream trailer, serving piping hot loaded jacket potatoes and fresh cut chips made to order. Open 7 days a week with generous portions and unbeatable taste. Find us outside M&S next to the Barclays Hub. Look for the shiny Airstream and grab your favourite today. Hot Potato Shop, now at Foss Park.
9: वेडिंग सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं. परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं. 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए. फॉरन का फोन मिलाए 02088390880 और विजिट ragasan.com. लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागासन.

0: ईमानदारी से बजाओ. यू हर्ड दैट देयर इज अ स्टोरी ना विच यू ऑलरेडी नो.
1: फील गुड ट्रैक brought to you by Dairy Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
0: अभी उसकी स्टोरी तो आपको मालूम ही होगी नेचुरली, क्योंकि इट वाज सो एक्सटेंसिवली यूज्ड एज अ स्टोरी बाय ईच एंड एवरी प्रेजेंटर. जब ये गाने का बजट आया तो आर डी बर्मन वॉज द म्यूजिक डायरेक्टर, और आर डी बर्मन ने उनको ब्रेक डाउन दिया कि हम इतना कोरस रखेंगे और सिंगर का इतना होगा, स्टूडियो का इतना होगा, एंड दे गेव अ लिटिल बजट एंड 25,000 रुपया उन्होंने बजट दिया हुआ था फॉर द कोरस सिंगर्स. अभी गाना आउटडोर में टूवर्ड्स जम्मू कश्मीर, एंड द सॉन्ग वॉज इन बींग शॉट इन अ वेरी बिग वे. इन्होंने इतना बड़ा काम करना था इसके लिए. सो नेचुरली आर डी बर्मन थॉट के नहीं यार, ये गाने में थोड़ा सा कोरस बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि इसमें जान डालनी पड़ेगी, मेरी इज्जत का सवाल है. तो इन्होंने वो ही किया, इन्होंने कोरस बढ़ा दिया और 50,000 हो गया कोरस का. अब जब कोरस का 50,000 हो गया सो जे ओम प्रकाश जी भड़क गए. वो स्टूडियो में आकर उनको आर डी बर्मन को सुना दी उन्होंने कि ये क्या है, इतना ओवर बजट आप काम कर रहे हो, दिस एंड दैट, वो बोल के चले गए. तो किशोर दा आए स्टूडियो में और बोलते क्या क्या क्या क्या क्या क्या हो रहा था इधर. उन्होंने देखा कि कुछ गड़बड़ हुई, किसी ने जाके बोला कि ऐसा पंचम दा को इन्होंने जे ओम प्रकाश जी ने बोल दिया कि ओवर बजटेड हो गया है सब कुछ. सो किशोर दा, यू नो द मिस्चीवियस किशोर दा, इन्होंने बदला लिया एंड टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सॉन्ग ही जस्ट बोल दिया कि बजाओ बजाओ ईमानदारी से बजाओ, यू नो 50,000 खर्चा करा दिया. So that is the story of that particular song. आगे जाते हुए बड़ी कहानियां होगी, आज सुनते जाइएगा.
1: This is Laika.
0: Okay, now I'm going to tell you something more, and that is about physiotherapist, occupational therapist, or paramedic. इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप एक ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हो या आप ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट की जगह फिजियोथेरेपिस्ट हो, पैरामेडिक हो, रेडी फॉर अ बेटर वर्क लाइफ बैलेंस, तो कैपिटा हैज हाइब्रिड क्लिनिकल असेसर रोल्स अक्रॉस द मिडलैंड्स. यस, एक्सपेक्ट गुड ऑफिस आवर्स, नो नाइट्स, every weekend off, a 39,500 starting salary and comprehensive training, remote opportunities available. Search Capita Health Assessment Jobs. Capita Health Assessment Jobs. So if you're a nurse, physiotherapist, occupational therapist or paramedic, ready for better work life, this is your opportunity.
1: Like a radio. Wake up to Kajal on breakfast every weekday at 6 a.m. and drive back with Raj Badden weekdays at 4 p.m. Like Radio. Get all the latest travel updates for the Midlands at breakfast and drive.
3: Gem in Gold Afternoons with Bali Brambert. Bali Brambert. Gem in Foods. Bilkul ghar jaisa swad aur ghar jaisi hi baat. Available at Asian stores near you.
4: Leicester, तैयार हो जाओ एक यादगार बॉलीवुड नाइट के लिए. Jay's Entertainment presents Bollywood Legend live in concert featuring Bollywood actor Sanjay Kapoor, playback singer Amantrika, और female singer Mayuri Patalia. Sunday, 27th of September, De Montfort Hall, Leicester. Doors open 6:30 p.m. Show starts 7 p.m. Tickets book kare demontforthall.co.uk
5: ya Mumbai Sandwich Station on 0116-332-0262 or call Mr. B on 0786-280-655. Exclusive radio partner, Laika Radio.
6: क्या आप नर्स, फिजियोथेरेपिस्ट, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट या पैरामेडिक है? क्या आप ऑफिस आवर्स में काम करना चाहते हैं जहां हर वीकेंड छुट्टी हो और नाइट शिफ्ट बिल्कुल न करनी पड़े? कैपिटा में हम मिडलैंड्स की विभिन्न लोकेशंस के लिए हाइब्रिड क्लिनिकल असेसर्स की भर्ती कर रहे हैं। एरिया से बाहर रहने वालों के लिए रिमोट वर्किंग की सुविधा भी उपलब्ध है। शुरुआती सैलरी है 39,500 pounds, साथ में पूरी ट्रेनिंग, लगातार CPD सपोर्ट और कई अन्य बेनिफिट्स। दिलचस्पी है, आज ही सर्च करें कैपिटा हेल्थ असेसमेंट जॉब्स।
7: सिटीबॉन्ड ट्रैवल प्राउडली प्रेजेंट्स यात्रा टूर्स 2026।
8: डिस्कवर कैलाश मानसरोवर, चारधाम, अमरनाथ, श्रीलंका विद अयोध्या, अयोध्या विद काशी, द गोल्डन टेंपल अमृतसर एंड मोर।
7: बुक बिफोर द 31st ऑफ अक्टूबर एंड गेट 150 pounds ऑफ कैलाश और 100 pounds ऑफ एनी अदर यात्रा टूर।
8: ऑल्सो एक्सप्लोर 2026 क्रूजेज
7: फ्रॉम अलास्का टू द कैरेबियन, द मेडिटेरेनियन, जापान एंड कोरिया। विजिट अस एट 5 मिल्टन रोड, लेस्टर, और कॉल सिटीबॉन्ड ट्रैवल ऑन 01162167225। वेयर एट ऑल प्रोटेक्टेड।
9: You know that clean, fresh feeling after brushing? Siddhayu toothpaste takes it to another level. Clove, neem, herbal actives, proper Ayurvedic care, but modern and premium. Fresh breath, healthy gums, no harsh chemicals. From the house of Baidyanath, with over 100 years of Ayurvedic legacy.
10: Siddhayu, now available in Falcon Cash and Carry, Leicester and Nottingham.
9: Siddhayu, Ayurved that fits your life.
11: Location, location, location.
12: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
11: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
12: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
11: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
12: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
11: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
12: To book, call our London office on 02039635757. Greens by Danube. Prime location.
11: High appreciation.
12: In Dubai.
13: Dard se purana rishta hai mera.
14: The wait is over. Imran Hashmi returns in the next chapter of a cult classic, Avarapan 2.
13: Usse mujhe chua, par apnaya nahi. To phir
14: releasing in cinemas on August the 14th. For your nearest cinema listings, visit Bakronia Media on Instagram.
15: Tasty swag and sweet charm. Every spoon feels like a tropical warm. Make puri and amras or milkshake full. Taste itna pure, ho jaye happy soul.
16: Mango season has arrived. You're also with Jaimin's Mango Pulp. No added preservatives or colors. Only purest taste of mangoes.
15: Jaimin Foods Mango Pulp. Available now.
1: Like a Radio Network. Proud hospitality partner. Ragasan.
17: Bollywood's biggest 90s songs, non-stop.

0: का पंछी एंड जे ओम प्रकाश के सब टाइटल्स या तो ए या डबल ए, दिस वॉज डबल ए एस पंछी. सो आज का पंछी ओम जी, he passed away on 7th August 2019, 7 years ago. The great producer and director. Wonderful filmmaker.
1: Currency updates. Sponsored by LemFi Mobile App. Send money to India.
0: Equivalent to £1. US dollars 1.3497. Indian rupees 128.34. Pakistani rupees 84.66. Afghanis 88.48. Kenyan shillings 174.62. and Mauritian rupees 63.61.
2: Leica Radio.
1: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LEICA. Download LemFi now. T's and C's apply. Listen wherever you are by downloading the LEICA Radio mobile app now. Gold Rate is brought to you by Ram Jewelers, Belgrave Road, Leicester. This is LEICA Radio.
0: Currently trading at £104.12 per gram.
1: Ram Jewelers, specializing in diamond jewelry, platinum jewelry, 22 karat gold, white gold jewelry, coins, and gold bullion bars. Visit Ram Jewelers on 116 Belgrave Road, Leicester, or call 0116 266 4278.
3: अब होगा वीकेंड और भी सुहाना द रितु शर्मा शो में एवरी वीकेंड 10 AM टू 1 PM ऑन लाइका गोल्ड रेडियो, लाइका रेडियो ग्रेटर मैनचेस्टर एंड लाइका रेडियो मिडलैंड्स पर.
4: गोल्ड आफ्टरनून्स विद बाली ब्रम्बर्ट. बाली ब्रम्बर्ट इज प्राउडली स्पॉन्सर्ड बाय जैमिन फूड्स, योर ट्रस्टेड नेम फॉर दाल भात, पाव भाजी, बिरयानी एंड सो मच मोर. अवेलेबल नाउ एट योर नियरेस्ट एशियन शॉप्स. जैमिन फूड्स, द ऑथेंटिक टेस्ट ऑफ इंडिया.
5: दिस पार्ट ऑफ द शो इज ब्रॉट टू यू बाय 108 बेस हॉस्पिटल उरी. स्टार्ट्स 15th of August एवरी सैटरडे एंड संडे एट 7 PM ऑन कलर्स टीवी.
6: आई होप मेजर नैना हम लोग वक्त पर पहुंचे.
7: लेस्टर फेल्कन कैश एंड कैरी फेस्टिव शॉपिंग का परफेक्ट डेस्टिनेशन. राखी और गणेश आइडल्स अब अवेलेबल हैं सभी फेल्कन स्टोर्स पर. ओनम संध्या के लिए प्री बुकिंग्स भी शुरू हो चुकी हैं. फेल्कन स्नैक्स 300 ग्राम्स की फुल रेंज सिर्फ £1.99 ईच. मुस्तफा देहरादूनी राइस 20 LBS सिर्फ 13.49. सुहाना खमन ढोकला 500 ग्राम्स सिर्फ 1.99 ईच या 2 for £2.99. टिल्डा ग्रैंड बासमती 20 kg सिर्फ 29.96. एस मोतीराम नमकीन अब सिर्फ 99 pieces से शुरू. और हर्ज़मैन बटर घी 20 kg सिर्फ 10.99.
8: फाल्कन कैश एंड कैरी 82A साइज 10 स्ट्रीट वेस्ट लेस्टर LE1 2JU एंड 2A रोल आउट सेल लेस्टर LE5 4UN.
9: Leicester Mela is back
10: and the stage is about to explode. Confirmed artist
9: Lember Hussain Puri. Get ready for full Punjabi energy, Bhangra beats and live Mela vibes.
10: Hosted by the team of LEICA Radio Network. Saturday 15th and Sunday 16th August at Abbey Park, Leicester.
9: An event by 101 Circle in association with Leicester City Council.
10: Arts Council England.
11: After the smash hit run in 2025, Surinderella is back for 2026. From the producers of Britain's Got Bhangra and The Deranged Marriage, Rifko Theatre Company turned this classic panto tale on its head and give it an exciting dizzy twist.
12: Be sure to catch the show across the Midlands. The Belgrade Theatre Coventry, Thursday the 16th to Sunday the 19th of July. And at the Crescent Theatre Birmingham, Wednesday the 9th to Saturday the 12th of September and Wednesday the 30th of September to Saturday the 3rd of October.
11: Click Rifko Theatre. com for more info, and with tickets from just £15, make sure you book before the clock strikes midnight. Start touring.

0: सबसे निराला
1: मैम्स्टर पानी पूरी और पानी पूरी का पानी.
2: All Mamster products are nut free and made in Canada. Now available at your nearest Asian grocery store. Creative Team Events and Peace Nation UK brings to you the King of Sufi Music, Lakhvinder Vidali, to London and Birmingham. This October, for sponsorship inquiries, call 07959-250-376.
3: Leica Radio launches Birmingham-wide on DAB from September 1st.
4: स्ट्रीट फूड का असली मजा लो क्वालिटी स्ट्रीट फूड लेस्टर पर. ट्राई कीजिए क्रिस्पी पानी पूरी, स्पाइसी वड़ा पाव और डिलीशियस पाव भाजी, सब कुछ फ्रेश और टेस्टी. लाइट खाना है तो हमारे चीजी सैंडविचेस और किड फ्रेंडली ट्रीट्स ट्राई कीजिए. तो मिलते हैं 62-64 बेलग्रेव रोड, LE4 5AS. कॉल ऑन 0116-332-5100 और मेन्यू ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं. क्वालिटी स्ट्रीट फूड लूटन एंड विमली में तो है, लेकिन अब असली इंडियन फ्लेवर्स लेस्टर में.
3: ये है लाइका गोल्ड.

जैसे मैंने कहा, सारी फिल्में डबल ए या ए से शुरू होती है। ये भी जे ओम प्रकाश की फिल्म आए दिन बहार के 1966 की फिल्म। मेरा महबूब है बेमिसाल लता जी की आवाज में, क्वाइट अ पैपी सॉन्ग, एंजॉय इट।

0: and we are listening to songs that have been written by Gulshan Bawra. आगे जाते हुए मैं आपको बताऊंगा कि उनका नाम गुलशन कुमार मेहता से गुलशन बावरा कैसे हो गया. सो गुलशन द मैड बावरा, द लिरिसिस्ट हु वाज सो वर्सटाइल. ऑनेस्टली ही रोट लेसर लिरिक्स देन हिज ओन काउंटरपार्ट्स, लेकिन उन्होंने जो भी लिखा वो क्वालिटी लिखा. और वर्सेटिलिटी देखो, उन्होंने गाना लिखा यारी है ईमान मेरा यार मेरी जिंदगी. प्राण साहब को कहा था कि फिल्म जंजीर में एक डांस वाला गाना होगा, एंड ही वो शेर खान, एंड ही सेड के उन्होंने मना कर दिया. उन्होंने कहा कि अगर आप एक शेर खान का जो कैरेक्टर है वो कैरेक्टर गिर जाएगा अगर उसको डांसिंग वांसिंग दिखाया उसका. लेकिन गुलशन बावरा ने एक ऐसी युक्ति मारी, ऐसी ट्रिक मारी, उन्होंने जाके दोस्ती वाला गाना यारी है ईमान मेरा यार मेरी जिंदगी ऐसा गाना उन्होंने लिखकर पेश किया प्राण साहब को. वो मान गए, उन्होंने कहा कि नहीं, वो कैरेक्टर जो है शेर खान का वो बरकरार रहेगा, तो मुझे ऐसा डांस सिखाओ जो मैं जिससे मैं लिरिक्स भी निभा सकूं और उसका कैरेक्टर भी. और वो ही हुआ. गाना सुपर डुपर हिट था बिकॉज ऑफ प्राण साहब्स प्रेजेंटेशन, द लिरिक्स, द म्यूजिक एंड मन्ना दा हु सैंग इट सो ब्यूटिफुली. कल्याण जी आनंद जी ने सजाया था संगीत. So all in all, the song was a hit because it had a story behind it as well about Pran Saab refusing to do it and then agreed later on. Ab Gulshan Kumar Mehta ki agar baat karun, unke pitaji was a very well-to-do man. Construction mein the wo, and dusre cousin brothers bhi the. Abhi hua kya ke partition hua. और पार्टीशन के दौरान रायट्स हुए, और रायट्स के अंदर 10 साल का गुलशन देख रहा है उसके फादर को और उसके अंकल को. लोगों ने उनको उनका कत्ल किया. अब वो लोग भागे वहां से बड़े भैया के साथ. बड़ी बहन जयपुर में थी जिन्होंने उनको बड़ा किया, गुलशन को और उनके बड़े भाई को. एंड देन हीज एल्डर ब्रदर आल्सो वाज विद हिम, एंड हिज ब्रदर गॉट अ जॉब एंड दे शिफ्टेड टू दिल्ली. एंड देन गुलशन ग्रेजुएटेड फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी एंड ही बिगन टू राइट पोएट्री. अब बॉम्बे जाके उनको एक नौकरी मिली, तो उन्होंने नौकरी ले ली इस बहाने से कि मुझे बॉम्बे जाके राइटर बनना है, और वहां से स्टोरी शुरू होती है. और एक फिल्म उनको मिली थी जिसके अंदर उनको दो गाने मिले थे लिखने को, और फिल्म का टाइटल था सट्टा बाजार. 1959 की फिल्म थी सट्टा बाजार. उसमें शैलेंद्र द ग्रेट राइटर, हसरत जयपुरी, इंदिवर, ये सब शामिल थे वहां मीटिंग में. और जब मीटिंग में एक नौजवान ने एंट्री मारी, यंग मैन, ऐसी कलरफुल मल्टी कलर्ड शर्ट पहनी हुई और बाल एकदम मैसी, अनरूली हेयर नहीं बोलते, जैसे बिखरे हुए बाल, एंड ही वाज लुकिंग लाइक वेरी ज़ेनी कैरेक्टर. ऐसा वो मीटिंग में एंट्री उन्होंने मारा, तो उसके प्रोड्यूसर डायरेक्टर जो थे शांति भाई पटेल ने देखा, हु इज दिस वियर्डो हु इज कम हियर. लेकिन उन्होंने जब गाने सुनाए जो उन्होंने लिखे थे, वो सुनकर उन्होंने कहा कि ये बंदे में दम है, जैसा भी कपड़े पहनता है कुछ भी करता है, लेकिन इसका नाम हम चेंज करते हैं फ्रॉम गुलशन कुमार मेहता टू गुलशन बावरा, मतलब मैड गुलशन. एंड मैड गुलशन सेड ओके. एंड पर्दे पे जब दूसरे राइटरों के साथ इनका भी नाम आया, शैलेंद्र, हसरत जयपुरी, इंदिवर इन द फिल्म सट्टा बाजार 1959 की, और टाइटल में आया गुलशन बावरा, वहां से एक नया नाम पैदा हुआ. एंड गुलशन बावरा देन स्टार्टेड राइटिंग लिरिक्स, और स्टोरीज ऐसी अच्छी अच्छी हैं. नेक्स्ट गाना जो है वही सट्टा बाजार का, जो हेमंत दाने और लता मंगेशकर ने बड़ी बाखूबी से गाया था. ऐसी कहानियां सुनाते सुनाते मैं गाने भी सुनाऊंगा. वी आर रिमेम्बरिंग गुलशन बावरा ऑन हिज 17th डेथ एनिवर्सरी. बॉर्न इन शेखुपुरा एंड पास्ड अवे ऑन 7th August 2009 इन मुंबई.
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: With £1 British sterling, you can get up to 127.65 Indian rupees. Don't forget to exchange in branch, online or SBI Yono mobile app. TNCs apply.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
2: Gold Afternoons.
3: Gold Afternoons.
2: Proudly sponsored by Jaimin Foods. The authentic taste of India. Dal bhat, pav bhaji, biryani. Bas pet sambhar jo, kyunki cravings badhne wali hai.
4: This part of the show is brought to you by Dhurandhar.
5: Ladies and gentlemen, you are not ready for this.
4: Mega blockbuster Dhurandhar on Utsav Gold, 15th and 16th of August at 9 PM.
6: Leicester Falcon Cash and Carry, festive shopping ka perfect destination. Rakhi aur Ganesh Idols ab available hain sabhi Falcon stores par. Onam Sandhya ke liye pre-bookings bhi shuru ho chuki hain. Falcon Snacks 300 grams ki full range, sirf £1.99 each. Mustafa Dehraduni Rice 20 LBS, sirf 13.49. Suhana Khaman Tokla 500 grams, sirf £1.99 each. Ya 2 for £2.99. Tilda Grand Basmati 20 kg, sirf £29.96. S Motiram Namkeen ab sirf 99 pieces. शुरू और हर्ज़मैन बटर घी 20 केजी सिर्फ 10.99.
7: फाल्कन कैश एंड कैरी 82A साइस्टन स्ट्रीट वेस्ट लिस्टर LE12JU एंड 2A रोल आउट सेल लिस्टर LE54UN.
8: Celebrate Diwali at the iconic Royal Albert Hall.
9: Join legendary singer Kavita Krishna Murthy
8: live on Sunday the 1st of November. An unforgettable evening of spectacular Bollywood and devotional songs
9: with the Royal Philharmonic Concert Orchestra.
8: Get your tickets from royalalberthall.com and sanathanevents.org. Brought to you by Sanathan Events.
9: Exclusive radio partner, Leica Radio Network.
10: Are you ready to embark on the journey of a lifetime? Look no further than City Bond Travel. Your trusted local travel agent with an astounding 50 years of experience. From worldwide flights to exotic holiday packages, captivating group tours, luxurious cruises, and soul-enriching yatras. We've got it all. Call Citybond Travel on 0116 266 6601 or visit our office on 5 Melton Road, Leicester.
11: Leicester Mela is back.
12: And the stage is about to explode. Confirmed artist,
11: Roach Killer. Get ready for big tunes, big vibes and a massive live performance.
12: Hosted by the team of Leica Radio Network. Saturday 15th and Sunday 16th August at Abbey Park, Leicester.
11: An event by 101 Circle in association with Leicester City Council.
12: Arts Council England.
13: Leicester's iconic hot potato shop is now serving up fresh flavour at Foss Park. After 45 years on Belgrave Road, we've rolled in with another brand new Airstream trailer, serving piping hot loaded jacket potatoes and fresh cut chips made to order. Open 7 days a week with generous portions and unbeatable taste. Find us outside M&S next to the Barclays Hub. Look for the shiny Airstream and grab your favourite today. Hot potato shop, now at Foss Park.
14: Weddings, celebrations, corporate events. At Ragasan, we take care of everything from sourcing the perfect location, designing incredible themes, and creating world-class cuisines and managing every detail through to the finish. With over 30 years of experience, we specialize in delivering truly exceptional class events. Call us on 020 8839 0880 and visit ragasan.com to begin your journey. Ragasan, locate, design, manage, cater.
3: Pepe's Piri Piri is turning up the heat. Pepe's Piri Piri on Belgrave Road, Leicester, with grills fired up and ready to serve your flame-grilled Piri Piri favourites. Pepe's Piri Piri, definitely worth a visit.
11: Voice that turned love, heartbreak and memories into timeless songs.
15: Borderless World presents Atif Aslam live in concert.
11: Atif Aslam brings his unforgettable sound
15: on Friday, 11 September at the AO Arena, Manchester. Tickets are now available on Ticketmaster.
11: Zembi Productions, supported by Rianne's Music.
15: Official radio partner, Laika Radio, Greater Manchester.
16: Laika Gold, officially London's number one Asian retro music station. Available in Greater London on 10:35 AM, DAB Digital Radio, Alexa and LaikaGold.com.
17: This is the Laika Radio Network across London, Manchester and the Midlands.
0: Okay. Here we go with a lovely ad here which says Laika Radio Network will be hosting the Leicester Mela on 15th and 16th August. To join us at the Abbey Park, Leicester, from 12 PM until 7 PM. Come and meet the Laika team, including Raj Patan, Kajal, Anika, Radio Ali and Vish Bhatnagar. Plus, maybe more. Yes, perhaps performances include Lember Hossein Puri, Roach Killa, Shin DCS, Edge Dami, and Ramit, and Don D, and Summer Blake, and others. Get your tickets from leicestermela.co.uk. £3 per person.
18: Hello there, my name is Deep Raja and I do the weekend breakfast show from 7 AM Saturdays and Sundays. Laika Gold in London, the Midlands and Manchester.
19: Laika Radio.
20: Holiday breaks are brought to you by Southall Travel.
0: Southall Travel is pleased to announce that the FCDO has lifted its advice against all but essential travel to Dubai. Call Southall Travel for the most competitive Dubai deals on 0208-574-8410. It's all protected.
20: Holiday breaks were brought to you by Southall Travel. Low prices for flights, hotels or holiday packages. Visit southalltravel.co.uk. Get all the latest travel updates for the Midlands at breakfast and drive. Laika Extra podcast update.
0: Wow, wow, wow. Podcast episode 28. The title is Astrology Real or a Trap? I mean, this episode uncovers if astrologers, palm readers, have been scamming us. Hosted by Kush. If horoscope matching is accurate, why do compatible marriages still end in divorce? Enjoy podcast episode 28. Laika Extra podcast, available on Spotify, YouTube, Amazon, Apple and other major streaming platforms.
20: Laika Extra is here.
21: Ye hai Laika Radio.
22: Laika Radio.
23: Good afternoons with Bali Brahmbhat. Bali Brahmbhat is sponsored by Jemin Foods. Tamara tea time no asli hero. Dal bhat, pav bhaji, biryani, namkeen, khakra, chikki, potato chip, mango pearl, pani puri, so many varieties for everyone. Marshe tamara najikna Asian shops ma.
24: Get ready, UK. Snil Grover is coming live with Gutti, Dr. Mashur Gulati, Rinku Babi, and more surprises on the night.
25: Expect music, madness, family entertainment, and non-stop laughter. Sunil Grover Live UK Tour 2026, happening on the 29th of October at the Over Arena Wembley in London.
24: 31st October, Mattioli Arena, Leicester. Produced by ImagineX Global and Tim's Media Productions.
25: Supporting mental health and well-being awareness. Tickets are on sale now via Ticketmaster, Eventbrite and AXS.
24: For more information, contact 07585-801-801. Official radio partner, Laika Radio Network.
26: Function
1: Location, location, location.
2: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
1: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas.
2: Located in Dubai, in a prime location for high appreciation.
1: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
2: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
1: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
2: To book, call our London office on 020-396-3-5757. Greens by Danube. Prime location.
1: High appreciation.
2: In Dubai.

0: Disha Basmati Rice, available now at all Falcon stores, Worli Superstore, Opus and all independent stores nationwide.
1: Mum, I don't know what to do anymore. My hair is getting worse. I've tried everything. Nothing works.
2: Beta, you're not alone. For five generations, our family trusted one thing. Pure Herbal Care. Amla, Bringraj, Neem. Real ingredients, not chemicals.
1: So where do we find something like that now?
2: Right here in London. Baidyanath Sidhayu Hair Oil Shampoo and Toothpaste. Pure Ayurvedic Premium and Made the way our eldest used it.
3: From the house of Baidyanath, with over 100 years of Ayurvedic legacy, Sidhayu, now available in Falcon Cash and Carry, Leicester and Nottingham.
4: एक ऐतिहासिक अने दिव्य अवसर पेरिस मा भव्य बीएपीएस स्वामीनारायण मंदिर ना ग्रैंड ओपनिंग मा दर्शन नो लाभ आप पवित्र यात्रा मा जोड़ाओ आपना परिवार साथे जहां मळशे शांति भक्ति अने आनंद अने साथे आईफिल टावर सेन रिवर क्रूज अने पेरिस सिटी टूर नो आनंद मानो डिपार्चर 5 सितंबर ना मंत्रा हॉलिडेज कॉल करो 0203773633 मंत्रा हॉलिडेज व्हाट्स योर ट्रैवल मंत्र

0: कैसी कैसी फिल्में, खलीफा, खेल खेल में, कस्मे वादे, आरडी एंड गुलशन बावरा, रंग बदल दिया इन्होंने इंडस्ट्री का.
1: लंदन, मिडलैंड्स, मैनचेस्टर, दिस इज द लाइका रेडियो नेटवर्क.
0: जी हाँ, इन्होंने ऐसा म्यूजिक डाला, यूथ सेंट्रिक, रिदमिक वेस्टर्न फ्यूजन साउंडट्रैक्स, जो एक टीनेजर की जो जबान होती है वो यूज की, एंड डिलिबरेटली थ्रू आउट ट्रेडिशनल हैवी उर्दू पोएटिक कंस्ट्रेंट्स इन केम यंगिस्तान. और इन्होंने खेल खेल में, कस्मे वादे, सनम तेरी कसम, पुकार जैसी फिल्मों में ऐसा म्यूजिक दिया, कमाल कर दिया. गुलशन बावरा.

0: आज इतनी सारी ट्रिब्यूट्स है, लेकिन मैंने गिन चुन के कुछ 3 ट्रिब्यूट्स चुनी। अब सुरेश ईश्वरा वाडकर, ईश्वरा वाडकर इनके पिताजी वॉज अ क्लॉथ मिल वर्कर। मील, आई एम हंग्री सो आई एम थिंकिंग ऑफ अ मील। क्लॉथ मिल वर्कर एंड ही वॉज ऑल्सो अ रेस्लर, यू नो, फ्री टाइम में रेस्लिंग किया करते थे। एंड उनके साथ छोटा सा सुरेश यूज टू गो विद हिम अखाड़े में, और फिर बाद में जवानी में ही स्टार्टेड गोइंग टू तलवाल कर जिम। सो फिटनेस फैनेटिक सुरेश वाडकर, हमारे ग्रेट सिंगर ऑफ द बॉलीवुड, अ फिटनेस फैनेटिक हु यूज्ड टू आल्सो गो रेसलिंग, बिकेम अ ग्रेट सिंगर। 7th of August 1955 बोर्न, एंड ही गॉट पद्मश्री, the fourth highest award by the Indian government in 2021. Inki wife hai Padma, and they've got 2 wonderful daughters, Ananya and Jia, jinko main mil chuka hoon kitni baar. And he's been active since 1976 for 50 years, and we wish him a long, happy, healthy life. Maine aaj subah message unko bhej diya tha, and I suppose I'll receive a reply later on. Ab dekha jaye to, he was born in Kolhapur, which is in Maharashtra. And baad mein, jab inko thoda sa encouragement mila, to unhone music shuru kar diya, aur music se teacher ban gaye. Arya Vidya Mandir mein ek teacher ban gaye the sangeet sikhane ke liye. आज भी इनकी बहुत बड़ी एकेडमी चल रही है सुरेश वाडकर जी की। एंड ही वन सुर सिंगार कंपटीशन इन 1976। एंड सोचो कि 1976 में सुर सिंगार कंपटीशन जीता तो सही, लेकिन जजेस कौन थे? जजेस थे म्यूजिक डायरेक्टर जयदेव, म्यूजिक डायरेक्टर रविंद्र जैन, जैसे बड़े बड़े नाम जजेस थे। उन्होंने इनको जिता दिया, मतलब के ही डिजर्व्ड इट। ही सैंग हिज हार्ट आउट एंड क्लासिकली ट्रेन्ड एंड एवरीथिंग। सो रविंद्र जैन ने इमीडिएटली उनको एक गाना दे दिया फिल्म पहेली में 1977 में, और 1978 में जयदेव जी ने उनको फिल्म गमन में एक गाना दिया। अब लता जी बहुत प्रभावित हुई इनकी आवाज से, सो लता जी ने उनको इंट्रोड्यूस किया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के साथ, खयाम जी के साथ, कल्याण जी आनंद जी के साथ, एंड देन ही बिकेम आल्सो द वॉइस ऑफ ऋषि कपूर इन हेना प्रेम ग्रंथ। राज कपूर जी को बहुत पसंद थे वो, बोल राधा बोल, विजय एंड अदर्स। एंड राजीव कपूर के लिए राम तेरी गंगा मैली, जी हाँ। नाउ इनको नॉमिनेशंस बहुत सारी मिली फिल्म फेयर अवार्ड्स में। जब भी इनका गाना कोई आता था तो नॉमिनेट हुआ करता था, लेकिन इन्होंने जीता कभी नहीं, कोई भी फिल्म फेयर अवार्ड इनको मिला नहीं। लेकिन द हाईएस्ट नॉमिनेशंस ऑन रिकॉर्ड विद पैरेलल टू किशोर कुमार, दैट इज 6 नॉमिनेशंस। मैं हूं प्रेम रोगी, वो गाना जो था 1983 का, उसमें नॉमिनेशन मिला। मेरी किस्मत में तू नहीं शायद, जो अभी आपने सुना, दैट वॉज डिजर्विंग एन अवार्ड, बट ही गॉट नॉमिनेशन। 1986 में राम तेरी गंगा मैली, 1990 में ये गाना लगी आज सावन, क्या गाना है, अगर मौका मिला तो आज सुना दूंगा मैं। लगी आज सावन की फिर वो झड़ी है, 1991 में ओ प्रिया प्रिया, 1997 में चप्पा चप्पा चरखा चले, ही शेयर्ड इट विद हरिहरन। ऐसे ऐसे गाने, मतलब धुआंधार गाने। एंड आई एम गेटिंग सो मेनी मैसेजेस अप्रिशिएटिंग। फाल्गुनी एंड मुकेश फ्रॉम लिस्बन आर सो हैप्पी दैट आई एम सेलिब्रेटिंग सुरेश वाडकर's बर्थडे।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: Your £1 in British sterling can get you up to 128. I repeat, 128 Indian rupees. Don't forget to exchange in branch, online or SBI Yono mobile app. TNCs apply.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. Get all the latest travel updates for the Midlands at Breakfast and Drive.
2: Gemin Foods sponsors Gold Afternoons. From dal bhat, pav bhaji and biryani to namkeen, khakra, chikki, potato chips, mango pulp, pani puri and sweets. Everything delicious. Everything for everyone.
3: This part of the show is brought to you by Dhurandhar.
4: Ladies and gentlemen, you are not ready for this.
3: Mega blockbuster Dhurandhar on Utsav Gold, 15th and 16th of August at 9 p.m.
5: लेस्टर तैयार हो जाओ एक यादगार बॉलीवुड नाइट के लिए जेज एंटरटेनमेंट प्रेजेंट्स बॉलीवुड लेजेंड लाइव इन कॉन्सर्ट फीचरिंग बॉलीवुड एक्टर संजय कपूर प्लेबैक सिंगर अमन त्रिका और फीमेल सिंगर मयूरी पटालिया Sunday, 27th of September, De Montfort Hall, Leicester. Doors open 6:30 p.m. Show starts 7 p.m. Tickets book kare demontforthall.co.uk
6: ya Mumbai Sandwich Station on 0116-332-0262 or call Mr. B on 07860-280-655. Exclusive radio partner, Leica Radio.
7: Southall Travel, 7 days a week. Southall Travel, 24 hours a day.
8: Southall Travel invites you to the beautiful city of Dubai. Enjoy the great shopping experience, luxury hotels, water sports, golf courses, Gold Souk, desert safaris and Dhow Cruise. There's never been a better time to go to Dubai.
9: Southall Travel. Call 0208 574 8410. 0208 574 8410.
10: Southall Travel can take you there.
11: Southall Travel, at all protected.
12: Leicester's iconic hot potato shop is now serving up fresh flavour at Foss Park. After 45 years on Belgrave Road, we've rolled in with another brand new Airstream trailer, serving piping hot loaded jacket potatoes and fresh cut chips made to order. Open 7 days a week with generous portions and unbeatable taste. Find us outside M&S next to the Barclays Hub. Look for the shiny Airstream and grab your favourite today. Hot potato shop, now at Foss Park.
13: Location, location, location.
14: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
13: Introducing Greens by Danio, a premium collection of townhouses and villas
14: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
13: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
14: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
13: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
14: To book, call our London office on 02039635757. Greens by Danube. Prime location.
13: High appreciation.
14: In Dubai.

0: Book now, visit starters.co.uk or call 0208-900-2323.
1: वेडिंग सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं। परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं। 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए। फौरन का फोन मिलाएं 0208-839-0880 और विजिट ragasan.com। लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागासन।
2: हेरल्ड, न्यू वर्ल्ड ऑफ इको फ्रेंडली disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free Herald catalog today. Call on 0208 507 7900 or download the catalog from heraldplastic.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldplastic.com.
3: हे फ्रेंड्स, के साथ वीकेंड पार्टी हो या खुद के साथ नेटफ्लिक्स एंड चिल, अ देसी तड़का इज टोटल रिस्क, है ना?
4: वेल, शी इज टॉकिंग अबाउट जयमीन फूड पोटैटो चिप्स, क्रंची टेस्टी एंड टोटल देसी स्वाद इन चार मजेदार फ्लेवर्स।
3: क्रंच कैन नॉट वेट, सो विजिट योर नियरेस्ट एथनिक स्टोर एंड ग्रैब योर जयमीन फूड्स पोटैटो चिप्स नाउ।
5: Leica Radio launches Birmingham wide on DAB from September 1st.
6: When you go abroad, everyone knows the best way to make yourself understood is to just say everything in English, but louder.
7: Four beers, please, garçon!
6: If only there was a way that could work with your advertising campaign. Well, there is. And you're listening to it. Because when you amplify your advertising with radio, 40 million listeners every week get the message. See radio differently at radiocentre.org.
8: You're both on the same road, same tarmac, same rules, just a different number of wheels. Motorbikes aren't in your way, they're on their way, just like you. So use your mirrors, check before you manoeuvre, and be aware of motorbikes, because when we look out for each other, everyone gets where they're going safely. Motorbike safety, it's on all of us. National Highways.
9: This super hit track is brought to you by Tilda Basmati Rice. With a range of grains and flavors from around the world, you can make every meal memorable.

0: Hope you enjoyed that tribute of Suresh Vadkarji, film Dil.
1: It's summer on the Leica Radio Network.
0: ये आखिरी गीत है 2014 में, दैट इज 12 साल पहले ये गीत सुनाई दिया था दिल से रेडियो में और आज मैं सुना रहा हूं. फिल्म है पूनम, आशा भोसले और मोहम्मद रफी और कोरस, एंड बड़ा प्यारा गीत है. दिल दे दे दिल ले ले, सिंपल फॉर्मूला है. लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत, राजा मेहंदी अली खान की लिरिक्स, एंड वी गॉट Yes, Sandy Shah, who is now going to take over. Unka saath nibhaiyega. Have a wonderful weekend. And we got Annika. Annie is on Leica Radio Midlands in place of Raj Patanji, who will be back next week. Bye-bye. Have a wonderful time over the weekend. Bali Brambat ka namaskar.

0: now visit starters.co.uk or call
1: 208-900-2323.
2: Location, location, location.
3: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
2: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas.
3: Located in Dubai, in a prime location for high appreciation.
2: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
3: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
2: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
3: To book, call our London office on 02 03963 5757. Greens by Danube. Prime location.
2: High appreciation.
3: In Dubai.
4: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए दुबई की शान फ्लाइट होटल साइट सींग डेजर्ट सफारी यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे तो दुबई के लिए तैयार यू डू द पैकिंग दिल डू द प्लानिंग कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 02 08574 8410 दैट्स 8574 8410
5: साउथ हॉल ट्रेवल At all protected.
6: Pepe's Piri Piri is turning up the heat. Pepe's Piri Piri on Belgrave Road, Leicester, with grills fired up and ready to serve your flame-grilled Piri Piri favorites. Pepe's Piri Piri, definitely worth a visit.
7: Like a Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan.
8: बहुत पढ़ाई किया है ना तूने तो एक सवाल का जवाब दे
9: पूछ ही लो सर
8: साल के कितने महीने में 28 दिन होते हैं
9: फरवरी सर
10: सर साल के हर महीने में 28 दिन होते हैं
11: इंडिया के टॉप 1% स्टार्ट्स दिस सितंबर ऑन स्टार प्लस
8: इंडिया के टॉप 1% सिर्फ डिग्री नहीं दिमाग भी जीतेगा
12: ही इज अ ग्रेट आर्न्ट दे वन ऑन ईच साइड ऑफ योर हेड फॉर स्टीरियो It's because of ears that radio ads can amplify your advertising. 40 million adults listen to commercial radio every week. That's 80 million ears, give or take. See radio differently at radiocentre.org.

0: Good Track, brought to you by Derry Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
0: It's time for everyone's favorite ride, the Radio Wally Roller Coaster.
2: This part of the show is brought to you by 108 Base Hospital Uri. Starts 15th of August every Saturday and Sunday at 7 PM on Colors TV.
3: I hope Major Naina hum log waqt par pahunche.
4: क्या आप नर्स, फिजियोथेरेपिस्ट, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट या पैरामेडिक हैं? क्या आप ऑफिस आवर्स में काम करना चाहते हैं जहां हर वीकेंड छुट्टी हो और नाइट शिफ्ट बिल्कुल न करनी पड़े? कैपिटा में हम मिडलैंड्स की विभिन्न लोकेशंस के लिए हाइब्रिड क्लिनिकल असेसर्स की भर्ती कर रहे हैं। एरिया से बाहर रहने वालों के लिए रिमोट वर्किंग की सुविधा भी उपलब्ध है। शुरुआती सैलरी है 39,500 pounds, साथ में पूरी ट्रेनिंग, लगातार CPD सपोर्ट और कई अन्य बेनिफिट्स। दिलचस्पी है, आज ही सर्च करें कैपिटा हेल्थ असेसमेंट जॉब्स।
5: कुछ शामें कैलेंडर में नहीं, दिल में हमेशा के लिए बस जाती हैं। इंडियन आइडल फेम सुगंधा डाटे लेकर आ रही हैं एक यादगार म्यूजिकल इवनिंग लाइव इन कॉन्सर्ट। Saturday the 5th of September at the Platinum Suite Leicester. अपनी सीट्स आज ही रिजर्व कीजिए। For more information call Mr. B on 07860 280655. Exclusive radio partner Leica Radio Network.

0: Fry-yay firecracker.
1: Leicester Falcon Cash and Carry festive shopping का perfect destination. राखी और गणेश आइडल्स अब अवेलेबल हैं सभी Falcon stores पर. ओनम संध्या के लिए प्री बुकिंग्स भी शुरू हो चुकी हैं. Falcon snacks 300 grams की फुल रेंज सिर्फ £1.99 each. मुस्तफा देहरादूनी राइस 20 lbs सिर्फ 13.49. सुहाना खमन ढोकला 500 grams सिर्फ £1.99 each या 2 for £2.99. टिल्डा ग्रैंड बासमती 20 kg सिर्फ £29.96. एस मोतीराम नमकीन अब सिर्फ 9 rupees से शुरू और हर्जमन बटर घी 20 kg सिर्फ £10.99.
2: फाल्कन कैश एंड कैरी 82A साइस्टन स्ट्रीट वेस्ट लिस्टर LE12JU एंड 2A रोल आउट सेल लिस्टर LE54UN.
3: यूरोप और यूके के सपने देख रहे हैं तो मंत्रा हॉलीडेज के साथ ट्रेवल कीजिए. दिल की धड़कनें बढ़ा देने वाले स्कॉटिश हाइलैंड्स, स्नोडोनिया के अफसानवी लैंडस्केप्स और स्टनिंग कोस्ट ऑफ कॉर्नवॉल को एक्सप्लोर कीजिए. आपका सफर होगा मैजेस्टिक स्विस एल्प्स से लेकर रोमांटिक पेरिस और टाइमलेस ब्यूटी ऑफ इटली के थ्रू.
4: विजिट mantraholidays.co.uk और कॉल 02030773633 नाउ. एप्टा बॉन्डेड मंत्रा हॉलीडेज. व्हाट्स योर ट्रैवल मंत्रा?
5: No need to fly back home this summer holiday. Come to Ambala and try out our Khoya Barfi, made from pure buffalo milk. Yes, it's the same barfi you get back home. Now made in England with milk from Ambala's own herd of buffalo. Only from Ambala. Don't take our word for it. Come and taste it for free this month. Now also doing the best kara chai, masala chai and elaichi chai. Just like back at home. Ambala, heritage you can taste. Visit ambala.co.uk.
6: Leicester Mela is back.
5: And the stage

0: नर्स, फिजियोथेरेपिस्ट, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट या पैरामेडिक है? क्या आप ऑफिस आवर्स में काम करना चाहते हैं जहां हर वीकेंड छुट्टी हो और नाइट शिफ्ट बिल्कुल न करनी पड़े? कैपिटा में हम मिडलैंड्स की विभिन्न लोकेशंस के लिए हाइब्रिड क्लिनिकल असेसर्स की भर्ती कर रहे हैं। एरिया से बाहर रहने वालों के लिए रिमोट वर्किंग की सुविधा भी उपलब्ध है। शुरुआती सैलरी है £39,500, साथ में पूरी ट्रेनिंग, लगातार CPD सपोर्ट और कई अन्य बेनिफिट्स। दिलचस्पी है, आज ही सर्च करें कैपिटा हेल्थ असेसमेंट जॉब्स।
1: Location, location, location.
2: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
1: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
2: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
1: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
2: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
1: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
2: To book, call our London office on 020-396-6357-57. Greens by Daniel. Prime location.
1: High appreciation.
2: In Dubai.
3: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए, दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सींग, डेजर्ट सफारी, यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम। साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे। तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग। कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 020-8574-8410। दैट्स 8574-8410।
4: साउथ हॉल ट्रेवल, ऑटो प्रोटेक्टेड।
5: क्योंकि आ गया है
6: खतरों के खिलाड़ी, सैटरडे एंड संडे एट 8 PM ऑन कलर्स टीवी, पावर्ड बाय स्टार टूर्स, एसोसिएट स्पॉन्सर लाइनक्रॉफ्ट।
7: खतरों के खिलाड़ी,
8: लाइक अ रेडियो नेटवर्क, प्राउड हॉस्पिटैलिटी पार्टनर, रागासन।
5: क्योंकि आ गया
6: खतरों के खिलाड़ी, सैटरडे एंड संडे एट 8 PM ऑन कलर्स टीवी, पावर्ड बाय स्टार टूर्स, एसोसिएट स्पॉन्सर लाइनक्रॉफ्ट।
7: खतरों के खिलाड़ी।
8: Miss your favorite show on Leica Radio Midlands? You can now listen back at leicaradio.com. It could be Breakfast with Kajal, Drive with Raj Badden, the legendary presenters Ravi Sharma, Bali Brambat, or the energetic Radio Wally. Listen back wherever you are by logging on to leicaradio.com and the Leica Radio mobile app, available in all iOS and Android stores. Download the app for free and listen to Leica Radio Midlands when you want. Leica Radio Midlands is a part of the number one Asian commercial network, the Leica Group, home of Leica Radio and Leica Gold.
9: Leica Radio.
10: You know how fans shout at football matches?
11: Oh, wake up!
10: That's because sound is the most effective way to tell the players they're rubbish. Works in advertising too, because when you amplify your advertising using radio, your campaign is 49% more likely to get noticed. See radio differently at radiocentre.org.
8: This is Leica Radio, part of the Leica Radio Network.
12: अपने बिजनेस को UK के लार्जेस्ट एशियन कमर्शियल रेडियो नेटवर्क पर एडवर्टाइज करने के लिए कॉल करें Leica Radio Sales on 0116-471-0697 या ईमेल करें sales@leicamedia.co.uk.
8: Bollywood romantic hits throughout the night. This is the Love Sound.

0: listen to the freshest hits added daily on Lyca Radio.
1: भोजपुरी बवाल।
2: पवन जी, मैंने सुना है आप दोनों के रिलेशंस अच्छे नहीं है।
3: आप सीधे सीधे आरोप लगा रही हो।
4: कहाँ सही झगड़ा चला था भाई।
5: द ब्रांड न्यू रियलिटी टीवी शो भोजपुरी बवाल, मंडे टू संडे एट 10 PM ऑन कलर्स टीवी।
0: बॉलीवुड रोमांटिक हिट्स थ्रू आउट द नाइट। दिस इज द लव साउंड।